मीडियम वेव 241.54 मीटर, अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार

0: बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, रबी की फसलों की कटाई के बाद गर्मी की ऋतु में ज्यादातर खेत खाली हो जाते हैं। इन खेतों में गर्म हवा बहने से नमी समाप्त हो जाती है। खेत खाली पड़े रहने से अनावश्यक खरपतवार उग आते हैं, जो कि कीड़ों मकोड़ों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। ये कीड़े आसपास की फसलों में रोग व्याधि की वृद्धि भी करते हैं, जिससे फसल की उपज एवं गुणवत्ता दोनों में कमी आती है। गर्मी की जुताई कर देने से ये खरपतवार तथा ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं। चूँकि खरीफ की फसल बरसात वाली फसल होती है, जिसके कारण बारिश होते ही या खेत में नमी होने पर बहुत से खरपतवार उग आते हैं, जो कि खरीफ की फसल को सीधे प्रभावित करते हैं। इन खरपतवारों से एक तो खरीफ की फसल की उपज कम हो जाती है तथा दूसरे इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रह पाती। आजकल श्रमिकों की वैसे भी समस्या रहती है, जिससे खरपतवार नियंत्रण श्रमिकों के द्वारा समय से एवं कारगर ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। अगर रासायनिक दवाओं से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो यह बहुत ही महंगा पड़ता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि गर्मी के मौसम में जब खेत खाली हो तो गहरी जुताई करके इन अधिकांश खरपतवार

0: दीवारों से छुट्टी ले ली जाए। गर्मी की जुताई करते समय कुछ खास खास बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि रबी की फसलों की कटाई के तत्काल बाद गर्मी की जुताई कर दें, ताकि इस समय की नमी का लाभ उठाया जा सके। यदि जुताई करने में देर होती है तो मिट्टी कड़ी हो जाती है, ऐसी दशा में खेत की जुताई करना कठिन हो जाता है। हाँ, फिर यदि बारिश होती है या खेत में हल्का पानी लगा करके फिर जब जुताई लायक हो जाए तो जुताई करनी चाहिए। दूसरी भी बात ध्यान देने की यह है कि जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा ये जुताई कम से 6 इंच गहरी हो, यानी कि खूब गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती और खेत को खुला ही छोड़ देते हैं। गर्मी की जुताई से कई लाभ हैं। एक तो गर्मी की जुताई से रबी के पौधों की जड़ तथा खरपतवार उखड़ जाते हैं तथा बरसात में वर्षा होने पर शीघ्र ही सड़कर खाद में बदल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। खरीफ ऋतु में वर्षा होने पर खरपतवार कम उगते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण करने में मुश्किलें कम आती हैं। गर्मी की जुताई से कीड़ों मकोड़ों का नियंत्रण भी होता है। प्रायः कीड़े सुषुप्तावस्था में रहते हैं। गर्मी की जुताई से ये जमीन की सतह पर आ जाते हैं, जो या तो तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं या चिड़िया आदि उन्हें खा जाती हैं। गर्मी की जुताई से अनेक रोगों को फैलाने वाले बीजाणु, जो कि खरपतवारों पर जीवित रहते हैं, खरपतवारों के साथ ये भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जुताई से तेज धूप में तपी मिट्टी तथा गहराई तक जुताई के कारण प्रथम वर्षा के पानी की काफ़ी मात्रा मिट्टी सोख लेती है तथा गहराई तक नमी सुरक्षित रहती है। मिट्टी में वायु संचार होता है तथा साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री राम की आराधना करने से हमें सच्चा सुख मिलता है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके गुण विकसित हो जाते हैं। श्री राम का चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे जीवन के लिए सुखदायी है।

सांसारिक मोह माया से विरत होकर भक्ति करना प्रभु और भक्तों के बीच का सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। श्रद्धा के साथ प्रभु की सच्ची भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है, जो संतन की संगति से आसान हो जाती है।

भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है शांति का, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन तर जाते हैं। सभी ब्रजवासी समर्पित भक्ति भाव से ये विनती करते हैं, लौट चलो घनश्याम।

0: आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विपिन सचदेवा, पंडित भीमसेन जोशी और महेंद्र कपूर के गाए भजन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: भावना जीवन की धुरी है, उसका सार है, ईश्वर के दरबार में मूल्य।

0: है तो केवल भावना का। बुद्धि संसार में गति करती है और भावना भगवान में। दोनों का अपना अलग अलग संसार है। सच कहा जाए तो यही जीवन की धुरी है, सार है और है आध्यात्मिक विकास का मुख्य आधार। बुद्धि विश्लेषण करती है, विचारों की काट छांट करती है। बुद्धि का संसार उलझनों से उलझा रहता है, समस्याओं से घिरा रहता है। एक समस्या सुलझती है तो अनेक और खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं टीसती हैं और चुभती भी हैं। इस कसक चुभन से बड़ा दर्द होता है। इनके दंश से मन छटपटाता है, बुद्धि कसमसाती है। इन समस्याओं के जाल में बुद्धि स्वयं को उलझा देती है और सुलझाने के फेर में बड़ी उलझन में फंस जाती है। कहीं भी और किसी जगह चैन नहीं मिलता है, अंतस बेचैन रहता है। बौद्धिक प्रतिभा साधन और सुविधाओं का अंबार तो लगा सकती है, परंतु इसका सम्यक रूप से उपयोग और उपभोग करे तो कौन करे? ये ज्वलंत प्रश्न है। सवाल जब उठता है तो वो इसका हल भी मांगता है, समाधान भी चाहता है। समुचित समाधान बुद्धि के पास कहां? बुद्धि तर्क करती है, तर्क और भी विकराल समस्याएं खड़ी करता है। ये उलझे हुए को और उलझा देता है। फिर समाधान क्या है? बुद्धि की तलाश और खोज से परे आखिर समाधान ढूंढें तो कहां? समाधान है भावनाओं में, परिष्कृत परिमार्जित भावनाओं में। इसका समग्र और सर्वांगपूर्ण जवाब सजल भावनाओं में समाहित है। रिश्तों के तार बड़े सूक्ष्म और कोमल होते हैं। संवेदनशील संबंध बुद्धि के लिए अबूझ हैं। ये भावनाओं की नींव पर खड़े होते हैं और प्रेम और सहकार से ही मजबूत बनते हैं। नेह, स्नेह, ममता, करुणा आदि इसे अनगिनत ढंग से नए नए रूपों में विनिर्मित करते हैं। भावनाओं के इस संसार में स्वयं भगवान का वास होता है। क्षण बड़े मधुर होते हैं। ये संसार बड़ा ही सरस और बौद्धिक जगत से जुदा होता है। भावना के संस्पर्श से बुद्धि की प्रक्रिया भी बदल जाती है। ये सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। फिर सद्बुद्धि भावनाओं की अनुगामिनी और सहचरी बन जाती है। बड़ा अनोखा घटता है सब कुछ, सब ओर। इसी कारण कहा जाता है कि बौद्धिक प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इसके मूल में वो तत्व नहीं जिससे कि जीवन सरस और संवेदनशील बन सके। मोल है अनमोल भावना का। आवश्यकता इस बात की है कि बुद्धि भावना का संरक्षण करे और इसके बदले भावना इसे पोषण प्रदान करे। इनके समुचित समन्वय से विकास के नए आयाम विकसित होंगे। अतः हमें बौद्धिक कुतर्क से बचना चाहिए और भावना का परिष्कार करना चाहिए।
1: ये था आज का विचार बिंदु।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं, बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर PN यादव।
1: मैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PN यादव। आज हम लोग बच्चों में डायरिया की बीमारी के बारे में, इसके संक्रमण के बारे में और इसके इलाज के बारे में कुछ बातें करेंगे।

0: पहले तो डायरिया होता क्या है? ये डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में भी पाई जाती है और बड़े बुजुर्ग में भी पाई जाती है। डायरिया हम तब कहते हैं जब किसी बच्चे में या किसी बड़े लोगों में दिन में 3 या इससे ज़्यादा पतला दस्त पानी की तरह बच्चा करता है, तो इसको डायरिया बोलते हैं। अब डायरिया होने से क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं, खासकर बच्चों में? बच्चे चूंकि अपनी बात बोलते नहीं हैं, माँ बाप से कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोगों को बच्चे के बारे में ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि इनमें डायरिया की वजह से पानी की कमी हो, उसकी वजह से और जो समस्याएं होती हैं उसको हमको देखने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए। अब डायरिया होता क्यों है? इसके कुछ दो तीन मुख्य कारण होते हैं, खासकर बच्चों में। बच्चों में ये बीमारी अमूमन 6 महीने से लेकर के 5 साल की उम्र के बीच में ज़्यादा पाई जाती है। इसके मुख्य कारण बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस का संक्रमण होता है, उसकी वजह से डायरिया ज़्यादा होता है बच्चों में। और दूसरे नंबर पे आता है बैक्टीरिया के कारण होता है। तीसरे नंबर पे आता है कोई परजीवी या पेट में जो कीटाणु होते हैं उनका संक्रमण होता है, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। अब वायरस का इन्फेक्शन बच्चे में होता कैसे है? अमूमन जब मौसम का बदलाव होता है, जैसे इस समय चल रहा है कि गर्मी, कभी कभी बीच में बारिश हो जा रहा है, तो रात को ठंडा, दिन में गर्मी, इससे भी वायरस के इन्फेक्शन बच्चों में होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जब भी बच्चे में वायरस का इन्फेक्शन होगा तो इनमें मुख्यतः डायरिया या अमूमन निमोनिया भी बच्चों को मुख्यतः होता है। आज हम लोग डायरिया के बारे में चूंकि बात करेंगे, तो डायरिया की बीमारी अमूमन 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में ज़्यादा पाई जाती है। 6 महीने से पहले ये कम होता है, लेकिन आजकल चूंकि बच्चों का देख रेख, बच्चे माँ का दूध कम पी रहे हैं, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने से लेकर के भी 6 महीने के बीच में बच्चों को डायरिया होने लगा, और उसका मुख्य कारण होता है कि माँ का दूध न मिलना। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने क्या, बच्चे को जन्म के बाद 1-2 हफ्ते के बाद से ही और 5 साल की उम्र तक डायरिया हो सकता है। अब छोटा बच्चा है, 1 महीने का है या 6 महीने का है या 1 साल का है, इसको अगर ये प्रॉब्लम होगी, ये बीमारी होगी, तो वो अपनी माँ से या अपने किसी से डिस्कस नहीं करता, बोलता नहीं। तो हम लोग उस बच्चे के बारे में, उस डायरिया की वजह से जो जो समस्याएं आ सकती हैं, हमको दिमाग में होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को देखते रहें और उसको गंभीर समस्या न होने पाए, उसको हम बचा सकें। वायरस इन्फेक्शन जो होता है, एक तो मौसम के बदलाव से होता है, दूसरा होता है जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं, तो अमूमन लोग आजकल कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ शादी विवाह हो गया या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ बच्चे जाते हैं, ठंडी चीज़ खा लेते हैं, कुछ तरल पदार्थ जैसे ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइसक्रीम हुआ या इस तरह के स्नैक्स हुए, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उससे वायरस इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और जब वायरस इन्फेक्शन होगा तो उसमें अमूमन डायरिया के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के अमूमन जैसे जो खाना पीना, आजकल जो शादी विवाह का सीजन है या रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं भी खाना सुबह बना हुआ हम दोपहर में शाम को खा रहे हैं, तो इससे भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। पानी की गंदगी, जो हमारी वाटर सप्लाई होती है या जो हम पानी पीते हैं, उसमें कहीं से गंदगी होगी तो उससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा होता है परजीवी कारण। परजीवी अमूमन जो हम लोग खेत से जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, उनके पैर से या उनके कांटेक्ट में आने से परजीवी हमारे, या सब्जियां होती हैं साफ सुथरी नहीं है, उससे भी परजीवी हमारी, फल फूल हैं जो सफाई से हम फल नहीं खाते हैं, उससे भी परजीवी हमारे पेट में चला जाता है और उसकी वजह से डायरिया होने का चांस रहता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा विषय पर डॉक्टर PN यादव से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे वाणी जयराम और उत्तरा केलकर। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र का वायलिन वादन, और दिन में 12:45 पर सुनिएगा संजय कुमार मिश्रा का गायन। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, सुबह 10 बजे झंकार, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनिएगा। दिन में 11 बजे सुनिए हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। दिन में 12 बजे सुनिएगा कहकशा। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रिया गुप्ता के गाए भजन, और रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में ही जगजीत सिंह और ए हरिहरन की गाई गजलें होंगी।

दिन में 1:15 बजे महिलाएं अंगनैया कार्यक्रम में सुनेंगी मानसिक स्वास्थ्य का महत्व विषय पर डॉक्टर पूजा साहू की बातचीत, साथ ही होगा गीत संगीत। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम 5:15 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, इंद्रधनुष, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, और सुनिएगा गीत संगीत।

शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे। आज की बात यूथ जंक्शन, इंद्रधनुष, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत। शाम 6:30 पर कृषि जगत में किसान भाई अल्प बचत के विभिन्न उपाय इस विषय पर सुनेंगे। धीरेन्द्र कुमार मिश्रा और रामकृष्ण मिश्र की बातचीत, साथी होगा खरपत राम और साथी का गाया लोकगीत। खरपत राम और साथी के गाए लोकगीत आप 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा। और शाम 7:31 पर सोरबेला में प्रेमचंद विश्वकर्मा का काव्य पाठ आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोहः आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो।

बनारस जैसे जीने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है, वैसे ही अपने माहौल में खुश रहने के लिए रिश्ते बेहद जरूरी हैं। रिश्ता वह चाबी है जो जीवन में खुशियों के दरवाजे खोलता है, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन में खुशहाली भर देते हैं तो कुछ रिश्ते आंखों से गिरकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये रिश्ते बेवक्त ना मरें, इसके लिए जरूरी है कि इन्हें संजोने में हम खुद को थोड़ा खर्च करना सीख लें। पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं। अपनेपन की भावना, त्याग, सेवा और समर्पण की पूंजी से ही रिश्ते बनते हैं, निभते हैं और जीवन में स्नेह की नमी बनाए रखते हैं। बनारस आज के समय में फेसबुकी रिश्ते तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो सचमुच के रिश्ते हैं उनसे हम छोटे छोटे स्वार्थ के लिए तो कभी समय की कमी और कभी पैसों के लिए दूर होते चले जाते हैं। आपको याद होगा, गांवों में पहले लोग चौपाल में जाकर बैठते थे। अगर किसी की बेटी की शादी होती थी तो पूरा गांव इस तरह लग जाता था जैसे उनकी अपनी बेटी की शादी हो रही हो। लेकिन आज तो ऐसे मौकों पर अपने बहुत करीबी लोगों के यहाँ जाने से भी लोग बचने लगे हैं। पहले त्योहारों के बहाने रिश्तों को सींचा जाता था। उपहारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था एक दूसरे से मिलना, उन्हें मान सम्मान और स्नेह देना। तब मुंह बोले रिश्तों को भी जी जान से ता उम्र निभाया जाता था। कहा जाता था कि जिन्हें भगवान आपसे सीधे नहीं मिला पाता, उन्हें ऐसे मुंह बोले रिश्तों के माध्यम से मिलाता है। और यकीन मानिए बनारस, अक्सर प्रेम के ये रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा निभा जाते हैं। श्री राम सुग्रीव, श्री कृष्ण सुदामा, श्री कृष्ण द्रौपदी, रानी लक्ष्मीबाई का नाना साहेब पेशवा और झलकारी बाई से रिश्ता हो, या पन्ना धाय का राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान, ये सब मुंहबोले रिश्तों के ऐसे ही कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं। कभी रिश्तों पर कहानियां लिखी जाती थी, फिल्में बनती थी, गाने गाए जाते थे, किताबें लिखी जाती थी, क्योंकि रिश्ते ही जीवन की बुनियाद माने जाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज रिश्तों पर स्वार्थ और व्यापार हावी होने लगा है। पैसों के बढ़ते महत्व ने कहीं ना कहीं रिश्तों की मिठास छीन ली है। लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यदि उसे समाज में रहना है तो रिश्तों की मर्यादा को मानना ही होगा। कहा भी गया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे उचटकाए, जूरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और अब बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस हाई कोर्ट के

लखनऊ बेंच ने RO/RO भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण को लेकर विवाद के मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि तय करते हुए उक्त पदों पर अगली तिथि तक नई नियुक्तियां किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विवेक यादव और अन्य की विशेष अपील पर पारित किया है। और गुड मॉर्निंग बनारस की जो गुड न्यूज आ रही है वो ये कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को कचहरी के पास मल्टी लेवल पार्किंग परिसर में 1000 बाइकों की पार्किंग स्थल का शुभारंभ किया। इससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को राहत मिलेगी। कचहरी मार्ग पर जाम की समस्या भी खत्म होगी। कचहरी और आसपास रोज बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। कचहरी आने वाले सड़क किनारे वाहन खड़े करते हैं, इससे यातायात प्रभावित होता है। और इसी क्रम में मैदागिन चौराहे के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसमें 100 दो पहिया वाहनों की पार्किंग होगी। शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि पार्किंग की व्यवस्था न होने से मैदागिन चौराहे के चारों मार्गों पर सड़क के दोनों ओर बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े रहते हैं। इनका दायरा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज से गोलघर जाने वाली सड़क तक बढ़ जाता है। मार्ग के दोनों ओर पूरे दिन वाहनों की भरमार रहती है, जिससे पैदल गुजरना भी दूभर हो जाता है। और विशेष रूप से विश्वनाथ धाम जाने का प्रमुख मार्ग होने से यहाँ यातायात का दबाव भी बेहद अधिक होता है। साथ ही साथ बनारस शहर के प्रमुख स्थलों और चौराहों पर नगर निगम अब मिस्ट गन लगाएगा। उनसे पानी की हल्की बौछार से भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। मैदागिन, लोहराबीर, वरुणा पुल और कचहरी समेत अन्य चौराहों पर इसे लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि गौशालाओं में भी मिस्ट गन लगाने का काम शुरू किया गया है, जिससे गोवंश को गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही बनारस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्म अवार्डियों को गृह कर, सीवर, जल कर में 50% छूट दी जाएगी। जी हां, 50% की छूट दी जाएगी। हाल ही में नगर निगम कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया था। नगर आयुक्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष से यह छूट प्रभावी हो गई है। आपको बता दें कि कार्यकारिणी ने दृष्टिबाधित और 80% से अधिक दिव्यांग भवन स्वामियों को गृह कर से मुक्त करने का भी निर्णय लिया हुआ है। गुड मॉर्निंग बनारस की जो दूसरी गुड न्यूज आ रही है वो ये कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के प्रयास से अप्रैल की जारी IGRS रैंकिंग में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बनारस G20 की तरह ही वाराणसी, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और चंडीगढ़ सहित 60 शहरों में ब्रिक्स 2026 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बनारस में 4 और 5 जून को नदेसर स्थित एक प्रमुख होटल में आयोजन होगा। इसकी मेजबानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कर रहा है।

बनारस नदी रेत संग दिखती पूरब काशी पश्चिम ओर, बीच धार पर तेज हवा में थामी सुर की डोर। जी हाँ, इन मिसरों में कैद है 3.5 घंटे की अविस्मरणीय स्मृतियां जो कल शाम काशी के सुधीजनों ने शुक्रवार को बटोरी। अवसर था पद्म विभूषण गिरिजा देवी की 97वीं जयंती पर सांझ प्राणायामी का। 6 साल पहले गिरिजा देवी के नाट्यमल स्थित आवास के सामने के पार्क से शुरू होकर गत वर्ष बजड़े से होते प्रणामी ने अत्याधुनिक क्रूज पर पहली बार जगह बनाई। शुक्रवार की शाम 5:22 बजे संत रविदास घाट से जब इस क्रूज ने घाट छोड़ा तो पूर्वाभिमुख संगीत रसिक जो हमने लाइनें बताई उन मिसरों के अनुरूप माहौल जी रहे थे। 80 से वरुणा संगम तक पहला मिसरा साथ चलता रहा। रेत वही, गंगा वही, मगर दक्षिण की ओर छूटती हर धारा के साथ मंच के पृष्ठ में दृश्य का परिवर्तन होता रहा।

और अब बनारस आपको बता दें मौसम का हाल चाल। तो मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। शुक्रवार को दिन में तीखी धूप निकली जबकि शाम में बादलों ने दस्तक दे दी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और एक ट्रफ लाइन के कारण बादलों ने दस्तक दी है और आज तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की भी पूरी संभावना है। हालांकि शुक्रवार सुबह के बाद धूप में तेजी महसूस होने लगी थी। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान बढ़ रहा था और इसके बाद भी दिन का तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 39 डिग्री और रात का तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 4.4 और रात के तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। तो बनारस से ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब आइए चलते हैं आगे और जान लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस इतिहास के पन्नों में आज की तारीख याद की जाती है भारत माता के एक ऐसे सपूत के लिए जो अपनी वीरता और दृढ़ता के लिए अमर है। उदयपुर के सिसोदिया राजवंश में मेवाड़ मुकुट मणि महाराणा प्रताप का जन्म आज ही यानी 9 मई 1540 को हुआ था। आज उनकी 486वीं जयंती है। वे अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। आपके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जीवत कमर था। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप की बहादुरी की जितनी चर्चा हुई है उतनी ही चर्चा और प्रशंसा उनके घोड़े चेतक की भी हुई है। श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता में उसकी खूब तारीफ की गई है। हल्दी घाटी में राजपूताने के पावन बलिदान शौर्य और तेज की गाथाओं से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। महाराणा प्रताप का वह अद्भुत पराक्रम इतिहास और वीर गाथा काव्य का उपजीव्य है। बनारस आज है महान स्वाधीनता सेनानी समाज सेवी और महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की जन्म जयंती। भारत का ग्लेडस्टोन और ठक्कर बापा ऐसे नामों से विख्यात गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया और स्वाधीनता संग्राम में अपना अप्रतिम योगदान दिया। भारत माता के ऐसे महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और साथ ही बनारस आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक और अभिनेता तपन कुमार जिन्हें आप तलत महमूद के नाम से जानते हैं।

मात्र 16 वर्ष की उम्र में आकाशवाणी लखनऊ से गजल गायन की शुरुआत करने वाले तलत वे पहले गायक थे जिन्होंने विदेशों में जाकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपनी मखमली आवाज से अरसे तक लोगों को दीवाना बनाए रखने वाले इस कलाकार को वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गजल गायकी को आपने सम्माननीय ऊंचाइयां प्रदान की। अपने करियर में आपने 17 भारतीय भाषाओं में 800 से भी अधिक गीत गाए।

और बनारस अब आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, बनारस काशी कथा। और काशी कथा में आज बातें चूहा गली की। जी हाँ, गलियों की बात हो और कबीर की उलटवासियों की चले, तो आज भी उसी श्रृंखला की एक गली से हम आपका परिचय कराते हैं। और ये

उन लोगों का जिन्होंने बनारस को अभी तक ठीक से देखा नहीं है या बनारस की सभी गलियों तक जिनकी पहुंच नहीं बन सकी है। तो आज हम आपको लिवा चलते हैं चूहा गली। नाम सुनकर चौंकिए नहीं, सिर्फ नाम ही है और गली की शुरुआत भर है। गली में आगे बढ़ेंगे तो इस चूहा गली में एक साथ दो दो सांड दौड़ते और धमाचौकड़ी मचाते नजर आ जाते हैं। पंचगंगा घाट से आगे बढ़ने पर हाथी गली के बाद आती है चूहा गली। आते जाते आप देख सकते हैं कि यहाँ गली के मुहाने पर लगभग 200 साल पुराना चूहा का चित्र उकेरा हुआ मिल जाएगा। गली का मुहाना देखकर आप इसके नाम का मंतव्य समझ जाएंगे। आपको लगेगा कि इस गली में इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल आना जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यह सच भी है। चूहा गली के नुक्कड़ से करीब 50 मीटर तक एक आदमी का भी गली से आसानी से गुजरना मुश्किल है।

0: एक आदमी का भी गली से आसानी से गुजरना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने पर यह गली इतनी चौड़ी हो जाती है कि फिर वहीं साड़ों की कलाबाजी का अखाड़ा बन जाती है। चूहा गली की कहानी भी कुछ कुछ हाथी गली की तरह है। यहाँ न तो कहीं चूहों का घर है, न चूहों के बिल नजर आते हैं। हाँ, शुरुआत में चौड़ाई 2 फीट से ज्यादा नहीं है, फिर भी गली का नाम चूहा गली ही है। पुरनिये बताते हैं कि लगभग 300 साल पहले एक मराठी साधु यहाँ आकर के अपना डेरा जमाए थे। वे भगवान गणेश के भक्त थे और नियमित सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा अर्चना और त्रिकाल संध्या करते थे। उन्होंने यहाँ गली के भीतर भगवान गणेश का एक मंदिर भी बनवाया और मंदिर के बाहर पत्थर से निर्मित भगवान गणपति की सवारी चूहे की एक बड़ी सी मूर्ति लगवाई। लोगों का कहना है कि बस इसी चूहा की मूर्ति के कारण इस गली का नाम चूहा गली पड़ गया। हालांकि बाद में यह मूर्ति भंग हो गई और लगभग 150 वर्ष पूर्व टूट फूट गई, लेकिन चूहों की याद में लोगों की स्मृति में बनी रहे इस बात को स्थायी बनाने के लिए बाद में लोगों ने यहाँ दीवार पर चूहे की बड़ी सी प्रतिमा बनवा दी। तो ये था बनारस काशी कथा का आज का अंक,
1: काशी कथा।
0: और अब इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: Good morning, Banaras.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अटकी हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को
2: भारतीय आर्काइव्स
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से

0: को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
2: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
1: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज

0: भूमिपूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
1: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और यह बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र का वायलिन वादन। राग था गुड़कली। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रीतम मिश्रा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल

0: आर एन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नव निर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसन स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का

0: भेज देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव

0: ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC U17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार वाल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC U17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बर्दारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसला कुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के उज़ैया

0: इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर एन रवि वजियाला और नई काबीना के मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुविंदो अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाती बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़द की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़द कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया है। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनक़द होनी है मुनक़द नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असेंबली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं, जिनकी 4 दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशन की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरी

0: में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा, जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकद्दस आग की नजर की जाएंगी और मौजूदा बैन अल्कवामी तनाजात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभा भिषिक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुज पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज से गैर कानूनी इकदाम को कानूनी जवाब हासिल होगा, बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमजोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फौज ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फजाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फजाई निजाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महादाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज में सवार भारतीय अमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि उसने उसी रोज 2 जहाजों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाकयात के बावजूद सिफारती इजराइल ने काम करना बंद नहीं किया है। 14/81 अमेरिका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकॉन्ग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामेनिगार से।
2: अमेरिका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इक्तसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वो एयरलाइन समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आजाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे खजाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज और इलाकाई इत्तेहादियों में जहाजों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी माहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंगबंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले दो दिन में केरलम माहे तकसीब

0: लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये भी खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बरतरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का उंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमाराती आदादोशुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निजाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदाद दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के 5वें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत MSMEs ताउन को फरोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनिए कार्यक्रम मधुरिमा।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा के आज के इस सफर में आपके साथ है ज्योति स्वरूप। नमस्कार।

सांसें कहती हैं सुन मेरे हमसफ़र, तुझे देखूं शरारत करता रहूं, मेरी धड़कन में रहते हो तेरा मैं सजदा करता रहूं, इश्क तेनू कैसा रंग ये लाया बिन तेरे मैनू कहीं चैन ना आया।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। आंखें कहती हैं क्या, बैठ मेरे पास, इबादत करता रहूं। आपके प्यार में धड़के दिल ये मेरा, मेरे सांसों में चली है बस तू ही तू, प्यार का रंग आपके चेहरे पे छाया।

जीवन की राह में अच्छा हमराही सच्चा हमसफर होता है, जो रास्तों से भटक नहीं सकता। राहें आसान हो जाती हैं और मंजिल आसानी से मिल जाती है। हमें तेरे पांवों के निशान मिल गए हैं, सब कुछ तुम ही।

सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से, बहती है नींदे और नींदों में सपने चंदा रे। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आ जा जमी पे और मिल जा कहीं पे, बातें करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
2: शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। डीएम ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, TCF के 16, PCU के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल की गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेड़ा RB वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया।

जाएगा, जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाई जाने वाली प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा, जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई

0: माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के एसटीकेवी फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। सामले में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश अनुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल शुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहां अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी सत्र में सरसों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है, वहीं पॉपुलर के पेड़ और आम के बाद किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
1: जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सह फसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीज की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का।
3: जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SC ID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों,

0: शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवसवार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरी गंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग साथ मनाई गई। सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनी पुत्री शमसुद्दीन निवासी मजगाई थाना चकरघट्टा जनपद चंदौली, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, लंबाई 5 फीट, रंगोरा है, इनके बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त हो तो थाना चकरघट्टा को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

अध्यक्ष मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति जिला चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार अजय कुमार, जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लावारिस अवस्था में जिला बाल संरक्षण इकाई रेलवे चाइल्ड हेल्थ डेस्क को दिनांक 27 सितंबर 2023 को मिला था, जिसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर थी। काउंसलिंग रिपोर्ट में बच्चे द्वारा बताया कि माता का नाम रानी कुमार, पिता का नाम छोटू कुमार यादव, निवासी ग्राम लीलादह, जनपद गोड्डा।

राज्य झारखंड बताया गया है। इसका नवीन पता ग्राम पटपरा टडिया रोड पश्चिम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में आवासित कराया गया है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर कृपया बाल कल्याण समिति जिला चंदौली को सूचित करने की कृपा करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मनोरमा देवी पत्नी आदिनाथ देव पांडे निवासी ग्राम दुबेपुर थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, ये 2 अप्रैल 2026 को दुबेपुर अपने घर से सुबह 8 बजे पूर्णिमा स्नान करने के लिए प्रयागराज चली गई थी। अब तक लौट कर नहीं आई हैं। इनकी लंबाई 5 फीट है, इनका रंग गोरा है। लापता होने के समय लाल कलर की साड़ी पैर से हल्का लंगड़ाकर चलती हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर कृपया नज़दीक के थाने को सूचित करें या प्रभारी निरीक्षक राजगढ़ को सूचित करें।

0: कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार अमरी देवी पत्नी स्वर्गीय मोतीलाल निवासी ग्राम सेटलमेंट एरिया थाना चुनार जनपद मिर्जापुर, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, ये 30 मार्च 2026 को सुबह 4 बजे से लापता है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना चुनार को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: आपका आज की उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का समीन आदा। समीन बज़्म, ये सच है कि दुनिया में मौजूआत की कमी नहीं है, शर्त ये है कि वो नजर चाहिए जो इनका इंतखाब कर सके, जो इन्हें गिरफ्त में ले सके। क्योंकि सामीन फिक्रो ख्याल की आमेजिश से तजुर्बा तख्लीकी तजुर्बा बन जाता है, जो अफसाना कहलाता है। जी हाँ सामीन, जिंदगी के किसी भी गोशे पर मुनहसिर होता है। बसा अवकात ये गोशा इतना जामे होता है कि उसमें पूरी जिंदगी अपने नशेबो फराज के साथ सिमट आती है। समीन इसी ख्याल के जेरे असर अपने अफसाने को सामीन के सामने पेश करने की कोशिश की है आज की अफसाना निगारा नुसरत शमसी ने। तो आइए समाप्त करते हैं उनका अफसाना सफेद पैराशूट।
2: मुझे सफ़ेद रंग इस हद तक पसंद है कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई दूसरा रंग पहना ही नहीं। या यूं कह लो कि जब से होश संभाला तब से मेरा बचपन कितना रंगीन गुजरा इसका मुझे इल्म नहीं। हाँ, जब से मेरी माँ ने मुझे सफ़ेद पैराशूट की कहानी सुनाई, उन्होंने इस रंग को मेरे अंदर जैसे जमा सा कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, और वो इतना पुख्ता रंग चढ़ाया कि फिर मैं ज़िंदगी भर सफ़ेद रंग में ही अपनी दुनिया बसा बैठा। जब मैं 3 साल का था तो मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, जिसकी हल्की हल्की छवि मेरे जहन में है, उनका चलना, उठना, बैठना, आवाज़ देना, प्यार करना, मेरे कपड़े बदलना, मेरी ज़िदें पूरी करना, मेरे काले होते दांतों की फिक्र, हर सुबह ब्रश कराते वक्त समझाना, अगर मेरा शू निकल जाता तो सुबह सुबह मुझे नहला धुला कर तैयार करना, ये सब मुझे हल्का हल्का याद है। शक्ल इसलिए नहीं भूल पाया कि ज़माना कैमरे का था। हाँ, तो जब मैं 3 साल का था कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अब वो अक्सर अक्सर काम करते लेट जाया करती, फिर वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। कभी उनके हाथ में सुई लगी होती तो कभी सर में पट्टी बंधी होती। रफ्ता रफ्ता वो लगातार बिस्तर पर रहने लगी। मैं और मेरी बहन, जिसकी उम्र 5 साल के करीब रही होगी, अब हमें कभी दादो और कभी नानों के यहाँ रहना पड़ता। अब जब भी मम्मी की तबीयत बेहतर होती है और हम दोनों के करीब होती, हमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाया करती। कभी जंगल और जानवरों की, कभी परियों की, कभी फरिश्तों की, कभी नबियों की। फिर उन्होंने एक बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिस सुनकर मैं और मेरी बहन

बहुत हैरान हुए। वो कहानी उन्होंने फिर हर रोज सुनाना शुरू कर दी, जैसे उस कहानी के किरदार बन गए। अब हम वो कहानी मम्मी को सुनाया करते थे। इन दिनों हम तीनों बहुत ही खुश रहा करते थे, हालांकि मम्मी की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब उन्हें कई कई दिन डॉक्टर के यहाँ रहना पड़ता था, लेकिन जब भी उनके करीब जाते मुस्कुराकर हमारा जहन बदलने लगती और बातें करते करते किसी न किसी तरह हमारी बातों का इख्तिताम सफ़ेद पैराशूट वाली कहानी पर होता। हाँ, उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए मम्मी हर रोज़ कुछ नई बात शामिल कर देती। वो कहानी कुछ यूँ सुनाया करती थी कि बच्चों एक नई कहानी सुनो, जैसे हमारी ये ज़मीन है और आसमान है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमारे लिए और ज़मीन और आसमान यानी दूसरी दुनियाएं बनाई हैं। जिस तरह हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी गाड़ी बाइक या जहाज़ पर सफ़र करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। जिस तरह पानी में बगैर तैराकी का लिबास पहने हम तैर नहीं सकते और अलग किस्म के कपड़े पहने बगैर हम तैराकी नहीं कर सकते कि डूब जाने का खतरा होता है, बिल्कुल उसी तरह उस दुनिया में जाने के लिए सफ़ेद पैराशूट पहनना पड़ता है। जाने वाले को एक ख़ास किस्म के बेड पर लेटना पड़ता है, वो नहा धोकर सफ़ेद पैराशूट पहनता है, उसे खामोश भी रहना पड़ता है और आँखें भी बंद रखना पड़ती हैं। फिर एक और ख़ास जगह होती है, जैसे जहाज़ों के उड़ने की जगह ख़ास होती है, बिल्कुल वैसी ही उसका भी एक मैदान होता है और उस दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। सब लोग मिलकर उससे उस मैदान में छोड़ आते हैं। फिर अल्लाह ताला सफ़ेद परों वाले फरिश्ते को गाड़ी लेकर भेजते हैं और लोग वहाँ दूसरी दुनिया में जाकर रहने लगते हैं। हम दोनों बहन भाई मम्मी का मुँह हैरत से तका करते। फिर मैंने हैरानी से पूछा, फिर ये कि हो सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद वहाँ उस दुनिया में रहने चली जाऊँ? हमें लेकर जाएंगी? मेरी बहन ने मासूमियत से पूछा। नहीं नहीं, वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते। तो फिर आपके बगैर कैसे रहेंगे? उसने फिर सवाल किया। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि बिल्कुल आप जैसे मेरे बच्चे वहाँ भी हैं, बल्कि उनके नाम भी यही हैं जो अभी तक मेरे बगैर रह रहे हैं। अब मैं उनके साथ रह लूँगी। आप लोग पापा को तंग नहीं करना, रोना धोना बिल्कुल मत, और जो मैं समझाती हूँ उसे याद रखना और अच्छा इंसान बनना, खूब पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनकर दिखाना। मैं वहाँ की दूरबीन से देखती रहूँगी। हो सकता है आप लोग अच्छे बच्चे बने रहें तो मैं वापस आ जाऊँ, पर मेरी एक शर्त है, इस बार मैं शक्ल बदल कर आऊँगी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? ये भी तो देखना है कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं। वो मुस्कुराकर हमारे पेटों में गुदगुदाती तो समझ गए ना, मेरे दोबारा आने पर मुझे अच्छे बच्चे बने हुए मिलना और खा पी कर थोड़े बड़े भी हो जाना। अशू, तुम तो मुझे निकाल लेना, बड़े हो जाना पापा की तरह, वो फिर गुदगुदाती। और हाँ, ये टॉप सीक्रेट है, अभी किसी को बताना मत, वो हमारे कान में फुसफुसाती और फिर सीने से लगाकर भींच कर प्यार करती। जब वो हमें अलग करती तो लगता कि रोई हैं, लेकिन वो तो मुस्कुरा रही होती थी। इस कहानी ने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहने लगा कि कब वो दिन आएगा और मम्मी जाएंगी उस दुनिया में, जहाँ बहुत खूबसूरत पार्क होंगे, तितलियाँ होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, पेड़ होंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करेंगी। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मम्मी ने एक दिन अचानक ही आँखें बंद कर ली। उनके हाथ की लगी हुई सुई निकाल दी गई और एक सफ़ेद चादर उन्हें उड़ा दी गई। मैंने चुपके से अपनी बहन के कान में कहा, क्या मम्मी आज दूसरी दुनिया में जा रही हैं? उसने मुझे देखा और कहा, लग तो रहा है, लेकिन किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है, मम्मी ने मना किया था। तो फिर सब रो क्यों रहे हैं? और क्या आज हमारे घर मम्मी के जाने की दावत है? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। दादी ने मुझे बुलाकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाया और बड़े प्यार से समझाया कि अशु बेटा, मम्मी अल्लाह मियाँ के पास जा रही हैं, अब नहीं आएंगी, उन्हें प्यार कर लो और देख लो। पता है, मुझे सब पता है, मम्मी ने मुझे सब बता दिया था। मैं उनका हाथ छुड़ाकर भाग गया, क्योंकि मुझे लोगों के हुजूम से घबराहट होने लगी थी। फिर वो सब होने लगा जो मम्मी ने कहानी में सुनाया था। कई घंटों की तैयारी के बाद उन्हें सफ़ेद लिबास, जिसे वो दूसरी दुनिया में जाने का पैराशूट कहा करती थी, पहनाया गया और लोग इकट्ठा होकर उन्हें उस मैदान में ले आए। मैं भी पप्पा की उंगली पकड़े साथ साथ था। अब मुझे तजस्सुस था उस जगह को देखने का, जहाँ से फरिश्ते उन्हें लेकर दूसरी दुनिया में जाते। ये तजस्सुस बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कोई बच्चा जहाज़ देखने की तमन्ना करता है कि वो कैसे उड़ जाया करता है। वहाँ की भीड़ में मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहा था और फिर

0: कामयाब भी हो गया। सबकी टांगों के बीच से घुसकर मैं बिल्कुल उनके करीब हो गया। पप्पा बराबर हिचकियों से रो रहे थे और मैं हैरानी से उनका मुंह तके जा रहा था कि मम्मा को तो कहानी सुनाकर गई थी और फिर ये सब। कुछ अरसे बाद जैसा कि मम्मी ने कहा था मैं वापस आऊंगी, वो आ भी गई, लेकिन उनकी शक्ल भी बदल गई थी और वो खुद भी। फिर भी मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी बहन जो अब 9 साल की होने को आई थी चुप चुप सी थी। मैं सुर्ख जोड़े में लिपटी अपनी मम्मी के पास घुसा चला जा रहा था और चाहता था कि वो पहले की तरह भींच कर मुझे सीने से चिमटा लें। ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरी रूह को वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। मम्मी की शक्ल भी बदल गई थी, साथ में काफ़ी बातें भी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ पर मेरी माँ की बनाई हुई कहानी खुलती गई और उसके सुनाने का मकसद भी समझ में आता गया। वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए। मेरी बहन की शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन मेरी जिंदगी से सफ़ेद रंग ना निकल सका। मेरी दुल्हन नीलो भी सिल्वर कलर के जोड़े में मेरे सफ़ेद पेंट वाले कमरे में मुझसे मिली थी और मेरी शादी का सूट भी सफ़ेद शेरवानी का ही था। मम्मी की सुनाई कहानी का मकसद पूरा हो चुका था और मैं एक कामयाब खुशबाश इंसान और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। नीलो बहुत अच्छी हमसफर साबित हुई। उसके साथ से जिंदगी ने कई रंग धनक देखे जिनकी रोशनी ने मुझे अंदर तक नूर से भर दिया। नीलों के साथ जिंदगी का सफर कहीं हसीन तो कहीं खारदार तो कहीं नरम मिट्टी पर चलते गुजरता चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी जिंदगी की शाहराह उसे हम सफर के साथ रंगीन थी, लेकिन फिर भी इस सफेद रंग को अपनी जिंदगी से ना निकाल सका। सफर की मुसाफत के भी 40 पड़ाव गुजर चुके थे। अब ना जवानी रही थी और ना पूरा बुढ़ापा, लेकिन सफर अभी बाकी था कि एक दिन अचानक ही नीलो मेरा साथ छोड़ गई। मम्मी की सुनाई कहानी मेरे घर में फिर शुरू हो गई और मेरी आंखों के सामने 65 साल पुरानी कहानी रील की तरह चल पड़ी और मैं अपनी नीलो का पैराशूट निकालकर उसे बाहर दे आया।
1: सफेद पैराशूट, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे नुसरत शमसी से उनका अफसाना। समीन, यह हकीकत है कि सरजमीन रुहेलखंड में शायरों और अफसाना निगारों की कमी नहीं। दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक कई ऐसे शायर और अफसाना निगार हुए हैं जिनकी तख्लीकात पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। तो समीन, आइए आज अदब की इस खास सिंफ शेर व शायरी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शायरी का ताल्लुक हमारे जज्बात से है, फिक्र से है और ख्याल से है। मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, पुरसोज गीत हैं ये किसी दर्द ला दवा के। तो आइए समाप्त करते हैं सिलसिला कलाम शायर के तहत ये खूबसूरत कलाम। आज के हमारे मेहमान शायर हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन।
2: आइए हजरात, गजल का मतलब आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ। समात करें हजरात।

0: सिलसिला कलामी शायर के तहत अभी आप समाप्त फरमा रहे थे डॉक्टर अशफाक हुसैन से उनका कलाम। सामिन, इसी के साथ अब वक्त हुआ है आपसे इजाजत का। अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए रामपुर रेडियो मरकज से अब इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी रामपुर की पेशकश। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं खरपत राम और साथी। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत का। कलाकार थे खरपत राम और साथी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं कन्यादान फिल्म का ये गीत है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

अब आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर। आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश की।

अब सुनते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जय किशन का।

ये आवाज़ थी आशा भोसले और परवीन सुल्ताना की, फिल्म का नाम परवाना, गीतकार कैफी आज़मी, संगीतकार मदन मोहन।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाए। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है

0: भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
1: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।
0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और आपने ट्यून किया है कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लोफर फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आमने सामने फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से। आवाज़ थी आशा भोसले की, गीत मजरूह का। अब आइए सुनते हैं मंचली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मंचली फिल्म के इस गीत के साथ ही झंकार कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना,
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
5: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: परमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं? और मौसम तो हमारे यहाँ बिल्कुल गर्मी के मौसम में ऐसा लगा कि जैसे बरसात आ गई वक्त से पहले।
5: जी जी सर, गर्मी में हमारे इधर भी बरसात कभी कभी हो जाती है सर।
0: जी जी, आपके यहाँ कभी कभी होती है? हम लोग के यहाँ तो कई वर्षों में इस तरह से नहीं हुआ कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में ऐसी बारिश हुई हो। काफी दो तीन रोज बहुत तेज बारिश हुई। तो आप रेडियो सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रमों का?
5: सर, आकाशवाणी वाराणसी को हमेशा सुनते हैं सर, लेकिन हमारा कॉल बहुत मुश्किल से मिलता है सर। करीबन ये मेरा तीसरा कॉल है, लेकिन करीबन एक साल के बाद होगा सर, और आपसे पहली बार मेरी बात हुई थी सर।
0: जी जी जी, बहुत स्वागत है। दरअसल होता ही है कि आप जैसे इस प्रोग्राम के चाहने वाले हजारों की तादाद में हमारे श्रोता है, और वो सभी अपने अपने तौर तरह से प्रयास करते हैं। किसी का फोन लग जाता है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं और जो आपसी स्नेह है वो सभी श्रोताओं के साथ है।
5: यहाँ सर, कार्यक्रम तो आपका हमेशा हमें को बहुत अच्छा लगता है सर। डीटीएच के माध्यम से नहीं पाते सर, मोबाइल ऐप पर हम सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
5: सर, फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया, गाने के बोले वादा ना तोड़ तू वादा ना तोड़।
0: हाँ, बड़ा प्रसिद्ध गीत है। उस समय एक ये गाना और दूसरा ऐ हवा मेरे संग संग चल, ये दोनों ही गाने एक ही वक्त में आए थे और बड़े पॉपुलर हुए। राजेश रोशन का इसमें गीत

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बधाई आपको, आपका फोन लग जाता है और अब तो आपके मेल और व्हाट्सएप वगैरह भी आ रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौनी बाबा धाम तोशकपुर बाजार जिला गाजीपुर से रामचंद्र चौधरी बोल रहा हूँ सर।
0: जी आप तो बिल्कुल नदी के किनारे भी हैं और मौसम बड़ा बदल गया अचानक से इस बार।
1: जी मौसम बदल गया, आधी तूफान आ रही है सर, बहुत पेड़ पौधे सब बहुत गिर गए, बहुत नुकसान हो गया सर।
0: काफी तेज हवा पानी का दौर चला और कई जगह ओले भी पड़े और काफी अचानक से ये मौसम बदला और कई वर्षों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है।
1: और मौसम भी ठंड है, गर्म भी नहीं उतना मौसम है।
0: लेकिन देखिए प्राकृतिक बहुत सारी चीजों के लिए लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन हर मौसम जरूरी है तभी ये प्रकृति का जो चक्र है, तमाम फसलें हैं, खेती किसानी के काम हैं और पशु पक्षियों पर भी इन मौसमों के इस तरह के बदलाव का असर पड़ता है।
1: जी और बताइए सर, आकाशवाणी परिवार के लोग और आप कैसे हैं सर?
0: हम लोग सभी अच्छे से हैं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और कभी पत्र के लिए धन्यवाद में भी शामिल होइए।
1: ठीक है सर।
0: जी आज कौन सा गीत सुनवाए रामसकल जी?
1: प्रोग्राम जो कि मीडियम डेसिमीटर पे जो है कि आपने सुधार किया, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी
1: लग रहा है सुनने में, बहुत आवाज भी क्लीन आ रही है, बहुत सुंदर आवाज।
0: जी जी, श्रोता जब कोई बात हमें फीडबैक देते हैं, बताते हैं तो उस पर हम लोग जरूर, हमारी तकनीकी टीम है उसके अधिकारी हैं और गौर किया जाता है।
1: आपके श्रोता है, रेडियो के बहुत बड़ा फैन है।
0: जी जी बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: गाना सर दिल कितना नादान है सर फिल्म है ना, गीत से बोले आएगी बरसात कहाँ जाएंगे।
0: ठीक है, गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते
1: सर, मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट दिल्ली सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी।
0: स्वागत है मुरलीधर जी। अब आपका लगता है आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों से लगाव उसी तरह हो गया है जैसा एक वक्त में आप आकाशवाणी ओबरा में जब हम थे और हमारे साथ आप जुड़े थे।
1: जी सर, उस समय 1999 लगभग उसी समय से।
0: जी जी, और तब आपकी पढ़ाई हो रही थी या फिर आप तब भी कारोबार में लगे थे इस तरह से वकालत?
1: नहीं, पढ़ाई चल रही थी सर।
0: जी जी, तो सोचिए कि आप हमारे कितने दो तीन दशक करीब हो गए उस समय से आप हमारे श्रोता हैं।
1: जी जी सर, आप और हमारा स्नेह प्यार का मामला है सर।
0: जी बिल्कुल, ये बना रहे और आपका तो इलाका भी अच्छा है। आपके यहाँ भी इस तरह से बूंदाबांदी वाला मतलब आंधी पानी आया आपके यहाँ भी?
1: जी, इधर 3-4 दिन से सर काफी आंधी तूफान आया था सर, बारिश भी हुई, मौसम कुछ ठंडा हो गया है सर। इधर तो फिर धूप निकल रही है।
0: जी इधर भी, अब तो आज तो धूप निकली है।

0: दो दिन तक वो मौसम ऐसा था कि एक हफ्ते के अंतराल के अंतर्गत 2 दिन वैसी स्थिति आई कि बहुत तेज आंधी पानी रहा।
1: आप
0: जी
1: कैसे हैं सर?
0: हम अच्छे से हैं। और अब बता दें कौन सा गाना सुनवाया आपको?
1: कल की आवाज एक फिल्म है सर, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब चाहत झलक रही है, तुम्हारी होठों की सुर्खियों से वफा की खुशबू महक रही है।
0: बहुत बढ़िया, पूरा गीत का मुखड़ा आपको याद हो गया है।

0: मुखड़ा आपको याद हो गया है।
1: जी जी, आपको रेडियो से प्रेम है सर, तो कुछ तो कुछ सीख जाता है आदमी, जैसे आपसे हमने सीखा, रेडियो से कुछ सीखा।
0: जी, हम लोग भी सभी रेडियो सुनते सुनते, दरअसल पहले जो रेडियो में लोग आते थे वो पहले श्रोता होते थे, उसके बाद वो प्रेजेंटर बने, प्रस्तुतकर्ता बने। जी, अब जो स्थिति यह है कि अब जो नए लोग आ रहे हैं वो उन्होंने रेडियो सुना नहीं है, इसलिए बहुत सारी जो रेडियो की परंपरा है, संस्कृति है, आर्ट है, श्रोताओं से जो लगाव है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते भाई साहब जी, आप?
0: जी जी, नाम बताइए अपना।
1: जी, मैं सुरेंद्र कुमार सूरी बोल रहा हूँ, अमृतसर से।
0: अमृतसर से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ जी, जी।
0: तो अमृतसर में तो स्वर्ण मंदिर है, बड़ा पवित्र स्थान है और दूर दराज से लोग जाते हैं। आसपास देखने सुनने की बहुत सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक जगह है वो। तो आप मेरे ख्याल से प्रोग्राम में पहली दफे शामिल हो रहे हैं।
1: एक बार और किए थे जिससे मैं आप नहीं आए थे, पैसा पर नाम भूल गया हूँ।
0: जी जी जी,
1: तो मेरी दूसरी कॉल है आज।
0: जी जी, बहुत दिनों, मुझे लगता है मेरे से आपसे पहली बार बात है। तो
1: आपका नाम?
0: मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी, अरुण पांडे, आप ही से तो बात कर।
0: जी जी जी, तो कितने दिन हो गए आपको बात किए हुए?
1: मैं ना इस समय रुद्रपुर हल्द्वानी आया हुआ हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ, रुद्रपुर हल्द्वानी से बात हुई थी आपसे।
1: वही
0: हमने कहा कि अमृतसर से तो हमारे श्रोता आप हैं पहले तो, लेकिन मूलतः रहने वाले अमृतसर के हैं या हल्द्वानी के हैं?
1: नहीं, इधर काम करने के लिए आए थे ना।
0: जी जी, रुद्रपुर में।
1: तो रुद्रपुर आए थे
0: जी। हल्द्वानी हमारा भी जाना हुआ था एक बार, जिस साल वो बहुत तेज बारिश हुई थी। और जी, उस वर्ष हम आए थे, 2015 की बात है शायद।
1: हाँ जी, हाँ जी, 2015 में आए।
0: वो चार पांच रोज बहुत तेज बारिश हुई उस समय।
1: अब सर जी, पांडे जी, आप कब आना होगा आपका?
0: तो कभी आना होगा तो होगा।
1: फोन लगाने की भी फोन नहीं लग पाता था।
0: हाँ, ये तो है, आप जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, सभी को प्रयास करना रहता है। और आप रेडियो सुन रहे हैं, जुड़े हुए हमारे कार्यक्रमों से।
1: मैं सर जी बनारस जब रहता था ना।
0: जी जी।
1: तो उस समय मेरी पहली कॉल पांडुराम जी ने उठाई थी।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत समय हो गया।
0: अच्छा, यानी आप बनारस में भी रहे हैं कभी?
1: हाँ जी, बनारस पांडेपुर आ चुके हैं।
0: जी जी जी, तब तो आप यहाँ की स्थितियों से वाकिफ होंगे, यानी बड़ा तजुर्बा है आपका। आप अमृतसर में के हैं और हल्द्वानी में काम कर रहे हैं, बनारस भी रह चुके हैं, तो इस केंद्र से आपका लगाव जो है। जी जी, वाह क्या कह रहे हैं,
1: बनारस ससुराल है मेरा।
0: तब तो आपका आना जाना लगा रहता होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: गाना सर जी अभी याद ही नहीं आ रहा, मैं होटल में नाश्ता कर रहा था।
0: जी,
1: तो मैंने फोन लगा लिया, मैंने कहा मेरी कॉल लग गई, लग भी गई। तो गाना वही लगा दो सर, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: क्या कहने। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा गीत है। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें हैं इस गीत में। इंदिवर के बोल हैं।
1: खुशी हुई आपसे पंडित जी, आपसे बात करके।
0: जी, हमें भी खुशी हुई। इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मोहित तिवारी बोल रहे हैं सर, बाराबंकी लखनऊ से।
0: बहुत बढ़िया मोहित जी, आपका फोन लग गया, बहुत दिनों बाद आपकी आमद हो रही है प्रोग्राम में।
1: जी जी सर,
0: तो जुड़े हुए हैं हम तो अच्छे से हैं, अपनी बताइए और वहाँ पर अब क्या कर रहे हैं
1: सर? वहाँ पे पहले तो सर बनारस में रहते थे पापा के साथ।
0: जी जी
1: उसके बाद सर जीएनएम कंप्लीट हुआ वहाँ बनारस आशापुर से। उसके बाद सर जीएनएम पूरा होने के बाद यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से सर इंट्रेंस होता है पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग के लिए।
0: जी जी
1: तो इंट्रेंस दिया सर हमारा यहाँ हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी सफेदाबाद है सर।
0: जी जी
1: तो यहाँ पे सर चल रहा है, प्लस सर जॉब भी चल रहा है।
0: बहुत बढ़िया, यानी अब आप सेटल हो गए लगभग। और
1: जी
0: क्योंकि
1: सर
0: आप
1: यस
0: तो
1: होता
0: हमारे
1: है।
0: बहुत पुराने श्रोता हैं जब पढ़ते थे, और आपके पिताजी भी हमारे केंद्र के कार्यक्रमों से जुड़े हुए रहे।
1: जी, काफी सर लगाव है आप लोगों से सर। और ये होता है कि अभी नाइट ड्यूटी सर चल रही थी
0: जी जी
1: तो अभी 8:30 खाली हुआ ड्यूटी से, तो ये हुआ कि हाँ आज तार का समय है, लाइए बात करने आपसे।
0: जी और अब तो आप ऐसे क्षेत्र में हैं कि जहां पर आपको इसको नौकरी से ज्यादा सेवा समझ करके ये करना होता है।
1: जी जी सर, पता है सर जब मॉर्निंग में मेडिकेशन करते हैं हम लोग या इवनिंग में, तो हमारे कई पेशेंट सर और अटेंडर पुराने गाने जब लगाते हैं तो सर विविध भारती की यादें आ जाती है सर सुनते हैं तो।
0: तो ये रेडियो है, और यहाँ पर चूंकि आप बचपन से रेडियो आपके घर में सुना जाता रहा है, तो ये जुड़ाव आपका बना हुआ है।
1: हाँ ये तो है सर।
0: तो वहीं पर रह रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और आपका जॉब भी चल रहा है।
1: जी सर,
0: आप बता दें
1: उत्साह का
0: कौन सा
1: बहुत
0: गीत
1: है
0: हम
1: सर।
0: आपको सुनवाएं।
1: सर वो उसका सुना दीजिए सर, लता के आवाज में मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी सर। आज बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके आज।
0: जी, हमें भी अच्छा लगता है कि दूर दराज के श्रोता हमसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। ये गीत हम आपको अब सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, और उम्मीद है आप यूं ही अपने काम को सेवा भाव के साथ करते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आंखें फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित जी, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि, और फिल्म आंखें का ये गीत जैसा आपने इसकी फरमाइश की है आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: सर।
1: जी खुशी हुई आपका फोन लग गया, और आप जैसे नियमित श्रोता है जिनका फोन लग भी जाता है, और बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि फोन नहीं लगता है, तो ये तो अब आप लोगों के ऊपर है कि किसका लगता है कैसे लगता है, अब हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं पाते हैं।
0: जी
1: जी अब बताएं कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके?
0: जी सर, हाल चाल तो हमारा अच्छा है, रेडियो सुनते हैं और फोन लगाते हैं, मेरा फोन भी लग जाता है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे श्रोता जिनकी तादाद बहुत है जो कहते हैं कि फोन नहीं लगता है, उसमें आप जैसे श्रोताओं के फोन हर एक दो हफ्ते के अंतराल पे लग जाते हैं।
0: जी
1: तो आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
0: हाँ सर, गाना रहेगा, फिल्म का नाम है, सर बड़ा तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ,
1: जी फिल्म का नाम बताइए पहले।
0: दिल है तुम्हारा, और इसमें का गाना है सर मस्ताना मो

0: जाने मंदिर है तुम्हारा, यही सब सुनना है।
1: बिल्कुल, ये गीत दरअसल, अच्छा आपके पास ये वो ईयरफोन वगैरह या जैसे वो जो होता है वैसा कुछ है क्या? क्योंकि आवाज में सीटी की आवाज आ रही है।
0: नहीं सर, ऐसा नहीं है, आवाज जो है डजिंग आता है हमारी
1: लेकिन
0: तरफ
1: आप
0: नहीं
1: जब
0: है।
1: ऐसे गा बोल रहे हैं तो नहीं आवाज आ रही है,
0: अच्छा
1: जब गा रहे हैं तब वो सीटी की आवाज आ रही है।
0: जी सर,
1: तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अलका याग्निक और उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजें हैं। कुमार सानू के आप फैन हैं।
0: जी
1: नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, नमस्कार।
0: जी सर, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश
0: जी, स्वागत है आपका।
1: भाईजान नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं जिला रामपुर टैक्सी स्वार ग्राम से आपका जाना पहचाना श्रोता इलियास पाशा बात कर रहा हूँ।
0: इलियास जी, आप हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, वरना बहुत सारे रामपुर के लोगों ने साथ छोड़ दिया है लगता है।
1: नहीं सर, हम तो अभी प्रोग्राम सुनते हैं और फोन भी लगाते हैं।
0: तो ये खुशी की बात है कि आप नियमित रूप से वहाँ से। अच्छा, आपके उधर भी बारिश वगैरह हुई?
1: जी सर, यहाँ हमारे मिर्चों की फसल है। पिछले प्रोग्राम में भी मैं आपको बता रहा था
0: जी।
1: तो सर इतनी बारिश हुई है कि इतनी बारिश हुई है सर, सारे खेतों में पानी भर गया।
0: हाँ, ये तो है कि ये बिना मौसम के ये बारिश हुई है।
1: जी जी, नुकसान तो हुआ, लेकिन सर दूसरे दिन को हरी मिर्च इतनी महंगी हो गई कि लोगों ने गीले खेत में तुड़वा दिया, तो अच्छा रेट मिला।
0: हाँ ये है, देखिए व्यवसाय में यही होता है कि कब कौन सा स्किल या टेक्टिस या परिस्थितियां काम कर जाए और मुनाफा हो जाए। लेकिन खैर, ये तो बेमौसम की बारिश तो है ही,
1: लेकिन गर्मी से भी राहत मिली है सर।
0: हाँ, कुछ दिन की राहत तो है, अब आगे देखिए, हर मौसम जरूरी है।
1: जी, हाँ,
0: क्योंकि अगली फसल के लिए अभी चीजें तेज गर्म होंगी, तभी आगे तैयारी हो पाएगी। और बारिश भी अच्छी तब होती है जब अभी तेज धूप होगी, कम से कम गर्मी के मौसम में।
1: सर मैं फोन लगा रहा था, कस्टमर आ गया चोकर लेने के लिए, तो मैंने कहा अपने हाथ से करो और जी, तोलो और लेकर जाओ, मैं फोन लगा रहा हूँ।
0: क्या कहने, इसलिए आप जल्दी से हमें बता दीजिए।

0: का नाम।
1: हाँ सर, मैं आपकी पसंद का गीत सुनूंगा मैं।
0: अब हमारी पसंद तो इतनी सारी है कि सारे श्रोताओं की पसंद हमारी पसंद है।
1: अच्छा सर, तो सर उसका सुनवा देना, दिल है बेताब का। क्या तुम्हें पता है एक गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, ये वाला गीत सुनवा देना।
0: ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। नमस्कार जी, बताएं।
1: बड़ा बेटा सहेल पासा, छोटा बेटा जुरेब पासा, हमारी बिटिया जियानूर, हमारे भाई आसिफ अली, अरशद अली, अदीब पासा, शमीर पासा, अरसलान
0: जी, बिल्कुल गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और प्रत्येक रविवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच। तो कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, सुनते रहिए और आज ये प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति थी अरुण पांडेय की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कहकशां, इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर, कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

दोपहर की इस उजली घड़ी में अल्फाजों के सुकून के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों की महफिल कहकशा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सफर में आपकी हम सफर हूँ मैं स्वस्ति श्रीवास्तव। सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार।

ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब हो।

हम तुम मिलकर सुकून की जिंदगी ढूंढेंगे। तुम खुद में मुझे ढूंढना, हम खुद में तुझी को ढूंढेंगे। कुछ तुम सोचो, कुछ हम सोचेंगे।

उसकी एक नजर ने जो जादू किया, जिंदगी भर का असर छोड़ गई। और अब तो आलम ये है कि दिल यही चाहता है कि वो मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे हर जगह बस वही नजर आती है।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशां। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 और 21 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
6: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं प्रिया गुप्ता। इनकी आवाज में लीजिए सुनिए ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं प्रिया गुप्ता। आप सुन रहे हैं इनके गाए भजन, आइए सुनते हैं इनका गाया अगला भजन। रचना है कबीर दास की,

प्रिया गुप्ता के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संजय कुमार मिश्रा का गायन। राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नंद किशोर मिश्रा।

शुद्ध सारंग आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नंद किशोर मिश्र। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक

0: अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए पहले खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना मुगलसराय जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार अरमान, जिनके पिता का नाम है गुड्डू, पता है काली महाल हनुमानपुर मुगलसराय चंदौली, ये पिछले कुछ दिनों से लापता है। सूचना के अनुसार 8 बजे दिनांक 29/3/2021 को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, जो कि खो गया है। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 6 वर्ष, रंग कोरा है और घटना के समय इन्होंने मेहंदी कलर का लोअर और पीला सफेद धारीदार शर्ट और हरे रंग का जूता पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना मुगलसराय जनपद चंदौली, मोबाइल नंबर 8115392963 और 9935311812।

थाना विंडमगंज जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सीमा देवी, जिनके पति का नाम है धर्मेंद्र कुमार, पता है पत्रीहा थाना विंडमगंज सोनभद्र, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, इनकी आयु है 24 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा है। घटना के समय इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना बिंडमगंज जनपद सोनभद्र। मोबाइल नंबर है 9454401598, 9454404287 और 9454400304। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आपको सुनवाएंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आज के कलाकार होंगे जगजीत सिंह और ए हरिहरन। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा प्रेमचंद विश्वकर्मा का काव्य पाठ। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे धीरेंद्र कुमार मिश्र और रामकृष्ण मिश्र की बातचीत, विषय होगा अल्प बचत के विभिन्न उपाय। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे खरपत राम और साथियों के गाए लोकगीत का। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर सुनेंगे आज की बात यूथ जंक्शन, इंद्रधनुष, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। बच्चे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5 बजे।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुनिए का दिन में 2:30 पर और अब से थोड़ी देर में यानी 1:15 पर बहने अपने कार्यक्रम अंगनैया में गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी। डॉक्टर पूजा साहू से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, विषय होगा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। ये थे हमारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले अब से थोड़ी देर में सुनिए इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मगरबी बंगाल में बीजेपी के पहले वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कल कोलकाता में हुई बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में जनाब अधिकारी को बिला मुकाबला लीडर मुंतखब किया गया था। हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर जे पी नड्डा, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजरा आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा मुतअद्दिद रियासतों के वजरा आला और सीनियर लीडरान मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जेर एहतमाम दूसरी ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब योगी इस मौके पर एक सोवेनियर भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि ये मुकाबला मुल्क भर से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाड़ियों के दरमियान हम आहंगी, दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को मजीद तकवीत देगा। रियासत में 7 मई से डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत पहले मरहले की खुद गिनती शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मर्दमशुमारी के पहले मरहले को ऑनलाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी अमल है और इसमें हर शहरी की शिरकत इंतहाई ज़रूरी है। इस दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना मर्दमशुमारी फॉर्म ऑनलाइन भरा। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तआवुन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुदशुमारी मर्दमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है। ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मर्दमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है। दो शिफ्टों में होने वाले इस इम्तहान में तकरीबन 4,64,605 उम्मीदवार शामिल होंगे। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि तमाम इम्तहान मराकज के कमरों और अहम मकामात को AI पर मबनी CCTV कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें जिला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। इम्तहान के तकद्दस से समझौता करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में खानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को ख़त्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।

0: ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: महकमे मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कई जगहों पर तेज हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुने वाली सब बहन लोग के गौरी का नमस्ते। अल्लाजो बहन साथे साथे तोह के भी नमस्ते।
1: नमस्ते गौरी दीदी, और देखा साथे में कार्यक्रम सुनने वाले भी सब बहनी लोगन के हमारे नमस्ते।
0: तो लाजो बहन।
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये बताव, तू इस समय कहाँ रहत हो, वो का हाल चाल है? इसे लागत था कि तू गुलरी के फूल हो गई हो, तू दिखाइए ना देत हो।
1: अरे दीदी देखा हाल चाल तो एकदम ठीक हो। और देखा बड़ा दिन पे दिखाए का बात कहलू हो ना, तो देखा ए समय घर गृहस्थी में इतना काम रहा था ना कि केहू से मिले का समय ना है मिलत हो। बाकी देखा आज हम बिहाने जल्दी से उठ के अपन सब काम जल्दी जल्दी करके माने हाली हाली करके तोहसे और बहनी लोगन से देखा मिले आयल है। और देखा साथे में कही कि काम काज तो सपरे घर परिवार में रहला दीदी, लेकिन एक दूसरे से मिलल भी बहुत जरूरी होला।
0: बहुत सही बात कहलू हो। हमहू बहुत दिन से इंतजार करत रही है कि का बात है लाजो बहन इतना घर गृहस्थी में बिजी हो गई है कि अपना बहन लोग खाती समय ना निकालत है। आ देखा हो जौन जब समय अपने लोग खाती ना निकाल पावेला ना, तो आदमी अपने घरे में रहत रहत अपने काम में रहत रहत इतना उजा जाला, ओकर मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे कहीं कह ना कि खराब होखे लागेला। वो बहुत चिंता में हो जाला, तनाव में हो जाला कि हम कैसे अपन सुख दुख कहीं और थोड़ा मन हल्का करी। एकरे बदे अपने बहिन लोग से मिलल बहुत जरूरी है।
1: एकदम सही कहा तू दीदी। देखा घरे में रहत रहत एक के माहौल में न रहे के चाहिए। सबसे पहले तो अपन माहौल बदलत रहे के चाहिए। देखा अपने दोस्त यार के सबसे मिले जुले कहलू कि मानसिक स्वास्थ्य का बात। तो देखा दीदी मानसिक स्वास्थ्य तब अच्छा रहे जब आप लोगन सकारात्मक सोच रहे हो। हर चीज के प्रति अपन सकारात्मक सोच रखें। कहे से कि देखा जैसन मन रही वैसन तन हो।
0: बहुत सही बात कहलू हो कि जब मन ही स्वस्थ ना रही तो तन कहाँ से स्वस्थ रही। आ जब ना मन ही का मन स्वस्थ रहेला ना, तो ओकरे साथे साथे देखा ओकरे घर परिवार आस पड़ोस सब मतलब सकारात्मक सोच हो जाला। बहुत अच्छा लगेला वो घर में एकदम माहौल जौन होला वो घर का ना एकदम हसत खेलत रहेला।
1: एकदम दीदी माहौल का बात कहलू ना दीदी। देखा ए समय शादी ब्याह लगन का समय चल रहा था। और देखा शादी ब्याह भी तब निक लगाला जब मनई अपने साथे घर परिवार के साथे साथे अपने आस पड़ोस में भी जितना लोग हैं रिश्तेदार नात हैं जब सब लोग मिलजुल के रहल ना, तो देखा शादी ब्याह का माहौल में और भी ज्यादा रौनक आ जाला। उनमें भी देखा सबके अपन अपने तरीके से मदद करे के चाहिए। ई ना सोचे के चाहिए कि नहीं हमरे घरे का कौनो कार्यक्रम ना हो हम काहे करी। देखा ई सब में भी ऐसा सोच ना रखे के चाहिए। हर तरीके का काम सब पे मिलजुल के करे के चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के करे के चाहिए।
0: हाँ तो लाजो बहन तुहार तो ये बात बहुत नीक लागेला हो कि छोट छोट बाकी बड़ा मोट मोट बात लेके आवेलू जे के बहन लोग सुनत हो तो उन्होंने लोग के नीक लागत हो कि हाँ देखा भले बहुत ज्यादा दिन पर लाजो बहन मिलल बाड़ी लेकिन बड़ा नीक नीक के बात कैली है। आ देखा बात तो होत रही, इससे पहले वो संदेश हो जाए
1: सुनवा दीदी।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।

0: जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
3: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो लाजो बहन।
6: हाँ दीदी।
5: देखा हो जोन अभी बात होत रहा हमने का कि शादी ब्याह में करत रहलू है ना, तो इमें देखा बड़ा निक लागेला जब सब केहू मिल के हसेला नाचेला गावेला। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जोन घर के घरैतीन होनी उन्हा लोग का जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जावेला। घर के जवन मर्द हव ई नहीं की उ लोग के जिम्मेदारी नाही होला, लेकिन ई लोग के समय से ना खैला के होश रहेला ना सोएला के होश रहेला, एकरी वजह से देखा उ लोग का स्वास्थ्य जवन लागेला। और जब धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हुई ना तो मन चिड़चिड़ा हो जाला।
6: सही कहा।
5: तो जैसे कि कहे का मतलब हमारी है कि मानसिक स्वास्थ्य पर धीरे धीरे ओकर असर पड़े लागेला। तो यही से जुड़ल देखा एगो हमने का बातचीत लेके आयल है जा कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तेरे बारे में डॉक्टर पूजा साहू से अपन बतियौले है सीखा बहिन। तब बहिन लोग एक सुने
7: बहनी। कबो कबो कोनो ऐसन परेशानी या बीमारी होले जेक पर बहनी लोगन ध्यान नहीं देवेलिन और सोचेलिन कि ई कोनो बीमारी नहीं है, चला समय के साथ ठीक हो जाए। लेकिन आज के समय में ई विषय पर बहुत ध्यान देवल जरूरी है। और उ विषय का है, वो बीमारी का है, महिला लोगन बदे जो मानसिक स्वास्थ्य है ओकर देखभाल कई। महिला लोगन के अपने मानसिक स्वास्थ्य बदे देखभाल करल काहे जरूरी है, एकर का महत्व है, यही विषय पर जानकारी देवे बदे आज हमन के बीच में आयल हैं डॉक्टर पूजा साहू जी। ई मलिकपुरा पीजी कॉलेज गाजीपुर में मनोवैज्ञानिक हैं और आप लोगन के ए विषय से संबंधित सही सही जानकारी दी हैं और बताई हैं कि कैसे आप लोगन अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब बहने आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
7: आप बहनी लोगन के ये बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, मानसिक स्वास्थ्य कहल के जाला का समझे बहनी लोगन।
8: देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार आया तो हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब कोई पागलपन नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को हम मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे।
7: अब घरे में तो घरे तीन लोगन हैं, उनके जिम्मे लड़कन बच्चन के देखे के है, घर परिवार में जो और बूढ़ पुरानिया लोगन हैं उनके देखे के है, सास ससुर का जिम्मेदारी है, अपने मन सेधु का जिम्मेदारी है, इतना भरे भीतर का जिम्मेदारी होला, कबो कबो आर्थिक संकट का भी समस्या रहेले, तो इतना कुल जोन समस्या होले उसे जूझा जूझा तो उनके अंदर मानसिक समस्या तो जन्म ले ही लेवेले।
8: अच्छी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे समाज में एक सुपर वुमेन नामक एक तमगा लगा दिया गया है, है ना, जिसमें क्या है कि महिला को, आपने पूरी बात कही दी कि बच्चे को भी देखना है, उनको अपने पति को भी देखना है, घर को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, और अगर वो वर्किंग लेडी हैं तो उनको उसके साथ साथ अपना जॉब भी देखना है। तो इसमें क्या होता है ना, कई

0: और कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य की बात तो अगर हम बाद में करें, शारीरिक स्वास्थ्य को ही इग्नोर कर देती हैं। तो इससे जो है, जो भी हमारे महिलाएं हैं वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगती हैं।
1: तो कैसे समझे कि कौने स्तर तक उनका तनाव या जो कहल जाला कि डिप्रेशन।
0: डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन
1: तो
0: तीनों को
1: एक
0: मिला करके हम कह सकते हैं कि अगर इन तीनों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो जो हमारी बहनें हैं वो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं।
1: लक्षण आप उनकर बता दें।
0: हाँ, जैसे नींद नहीं आ पा रही है, रात रात में हम लोग उठ के बैठ जा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, अपने आप में ही रहने लगे हैं, चिड़चिड़े रहने लगे हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात में गुस्सा आ जाना, तो ये सब चीजें हमें, हमारी जो बॉडी है वो एक संकेत देती है कि इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। हम पहले अपने ऊपर ध्यान दें, और अगर हम अपने से इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप निसंकोच होकर के प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य आज भी हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है। मतलब अगर हम बुखार की दवा खा रहे हैं या बुखार के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम बता देंगे कि अरे हमको बुखार हो गया है, देखिए दवा खा रहे हैं। लेकिन अगर हम एंजाइटी की दवा खा रहे हैं या किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आज भी हम सोचते हैं कि वो हम छुपा लें, हम ना बताएं, कहीं अगला व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो पागल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: माने इनके जाए के
0: ये
1: चाहिए, सलाह लेवे के
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: अगर आप, आपको लगता है कि आप अपने से हैंडल कर सकती हैं, अपनी दोस्त, अपनी माँ, अपने मित्र, किसी से भी आप पहले शेयर करिए उस चीज को। अगर आपको लग रहा है कि आप शेयर करके भी नहीं उबर पा रहे तो आप 3 हफ्ते से ज्यादा अगर आप लगातार इस चीज को फेस कर रही हैं तो तुरंत आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाइए।
1: अच्छा, गवाई में तो कबो कबो ऐसा समस्या होले कि भाई केहू ए तरह का काउंसलिंग करे वाला, परामर्श देवे वाला नहीं मिलेला। हाँ,
0: जी
1: तो ओमन कोनो ऐसा रास्ता, कोनो ऐसा विकल्प आप बताएं कि बहनी लोगन ये समस्या से अपने समूह से ही जुड़ करके उबर।
0: सही कहा आपने कि गांव में तो अभी तो शहरों में ही इसकी पहुंच इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि अगर महिलाओं को स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो वो जाके प्रोफेशनल हेल्प लें, तो गांवों में तो बहुत दूर की बात है। तो इसका सीधा सा उपाय ये है कि हर किसी की लाइफ में एक इंसान ऐसा होता है जिससे वो अपने मन की हर बात कह सकता है।
1: जी
0: तो आप जब किसी चीज को लेकर के परेशान हैं, अंदर अंदर ना घुटें, आप अपनी बातें उस व्यक्ति से शेयर करें तो हो सकता है कि वो आपको कुछ रास्ता बताए, कुछ समझाए और पॉजिटिव सोचें।
1: कबो कबो तो ऐसा होला कि अपन मन से धू भी रहेलन, तो अगर वो मित्रवत व्यवहार करत हुआ तो मन ही अपन दुख सुख उनसे कह के वो समस्या से निकल सकेला।
0: जी
1: हाँ, अच्छा
0: बिल्कुल।
1: एक प्रश्न और हमरे मन में आवत है, वो सोचत है आपसे पूछ लें कि जैसे मान लें कि हुए तरह के समस्या से पीड़ित है, तो उस समस्या से निकले बदे का योग है, प्राणायाम है, चाहे आहार विहार है, एकर भी प्रभाव पड़ेला।
0: बिल्कुल पड़ेगा। योग जो है, योगा और प्राणायाम सबसे अच्छा तरीका है। और इसके साथ ही मैं सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि ना कहना सीखें। जरूरी नहीं है कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो आपको करना ही है। ना कहना सीखें, उसके साथ ही मी टाइम निकालें। मी टाइम मतलब
1: अपने लिए
0: अपने
1: समय
0: लिए
1: निकाल।
0: आप समय जरूर निकालिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपको खुशी देती हैं, आपका सपना है, अपने लिए सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा जरूर से समय निकालिए। अपने आप के बारे में सोचिए, अपने लिए जीना सीखिए।
1: बहुत अच्छी बात आप कहत हैं, और बहनी लोगन अगर सुनत हैं तो एक बात के बढ़िया से गठिया के रख लें कि भाई उनके ऊपर पूरे घर परिवार का जिम्मेदारी होले, और उनके अगर अपन घर परिवार संभाले के है तो पहले अपने आप के मजबूत रखे के पड़ी। कबो कबो घर परिवार में इहो देखल जाला कि सबके खिया पिया दी है बहनी लोगन, बाद में अपने लिए खाए के भी ना अटी ना, तो नून रोटी खाए के रह
0: जी
1: जाइए।
0: बिल्कुल, यही बात मैंने कही ना कि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही पहले हम सोच लें कि क्या होता है कि कई बार खाना नहीं भी बचा तो हम लोग अपने लिए कभी ये नहीं सोचते चलो कुछ बना ले, रे ठीक है हम लोग दूध पीकर ही सो गए। तो अपने लिए आप अपने आप को एकदम अवॉइड मत करिए, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रही शारीरिक और मानसिक रूप से तो आपके बच्चे, आपके पति, आपका घर, आपका वर्क सब कुछ सफर करेगा।
1: बिल्कुल सही बात कहत हैं, और हम लोग नारी सशक्तिकरण का बात करीला तो नारी के आपन शक्ति, आपन

0: पहचान बनावे बदे घर परिवार में सबके ये एहसास दियावे के होई कि हमार भी घर परिवार में महत्व है।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अपने महत्व को समझे और उस हिसाब से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें और इसको स्टिग्मा ना समझें।
0: अच्छा, ये विषय में और बहनी लोगन से आप का बतावल चाहब, का सलाह देवल चाहब?
1: सलाह देने के पहले मैं इसका मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है इस देखिए भारत में मैं इसका थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगी कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार हर 7 में से एक व्यक्ति जो है मानसिक रोग से पीड़ित है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो देखिए जो डिप्रेशन है वो पुरुषों की तुलना में एंजाइटी और डिप्रेशन 50% महिलाओं में ज्यादा पाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद महिलाओं की जो बॉडी है वो भी ऐसी बनी है कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से कई बार हमें परेशान कर देता है, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है जिसे हम प्रसवोत्तर अवसाद भी कहते हैं। तो डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो हर 5 में से एक नई माँ जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीड़ित है।
0: अच्छा, गर्भावस्था के समय भी तो डिप्रेशन हो जाएला, तनाव हो जाएला, अनायास कोनो कारण भी नहीं है तब वो, एक बारे में भी हम
1: देखिए जब गर्भावस्था शुरू से ही हमारी बॉडी में महिलाओं की बॉडी में इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और एक नया जीवन बॉडी में जब आ जाता है तो मूड बहुत चेंज होते हैं, मानसिक डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक स्ट्रेस, प्रेगनेंसी से संबंधित स्ट्रेस और प्रेगनेंसी से संबंधित एंजाइटी, बच्चा कैसा होगा जो हमारी सोसाइटी में है, लड़की होगा कि लड़का होगा, इन सब चीजों से संबंधित बहुत तरीके की मानसिक समस्याएं आती हैं जिनको हर महिला मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सोचती होगी। तो ये गर्भावस्था से संबंधित कुछ तनाव और एंजाइटी हैं।
0: और आप जो बतावत रहलीन है वो बताएं।
1: हाँ, इसके आगे मैं घरेलू हिंसा और रिलेशनशिप
0: जी,
1: तो इससे भी देखा गया है कि 30% जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा से संबंधित और अपने हस्बैंड के साथ परिवार में रिलेशनशिप की वजह से मानसिक तनाव में रहती हैं। और अगर महिला जो है वर्किंग है तो उसके साथ जो दोहरा जिम्मेदारी है तो 40% जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो दोहरी जिम्मेदारी की वजह से मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं। अक्सर क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अगर एक स्वस्थ समाज की, स्वस्थ देश की नींव रखनी है तो हमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करनी होगी।
0: आप हार्मोनल असंतुलन का बात कर लेना, तो जब किशोरावस्था में रहेली लड़किन रहेली, तो जब किशोरावस्था में रहेली तो उनके अंदर बहुत तरह का हार्मोनल असंतुलन दिखाई देवेला, तो ऐसे भी उनके मानसिक तनाव होला, वो कैसे उमन से बाहर निकले?
1: कि जब पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है और पीरियड जब होता है तब अक्सर मानसिक रूप से बच्चियां जो हैं वो परेशान रहने लगती हैं। तो थोड़ा सा योगा करें, अपने लिए समय निकालें, है ना, अच्छे लोगों से बातचीत करें, एक हेल्दी डाइट लें, ये सब चीजें करके आप शारीरिक और मानसिक, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा।
0: अच्छा, जब किशोरावस्था का बात कर रही थी तो रजोनिवृत्ति का भी बात दिमाग में आवा था कि रजोनिवृत्ति के समय भी अनायासी मानसिक तनाव का स्थिति उत्पन्न हो जाए।
1: ऐसे हार्मोन्स हैं जो जिस रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज जब पीरियड बंद हो जाता है ना, तो कई सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में अचानक बनने बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, मानसिक रूप से महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं।
0: तो ऐसे में क्या करें कि चाहिए?
1: देखिए, सबसे सही तरीका है आप योग करें, मैंने अभी बताया कि योगा करें, अच्छा हेल्दी डाइट लें, अपने लिए समय निकालें, जो चीजें आपको पसंद है वो आप जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, ये सब चीजें जो है आपके मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने का काम करेगा।
0: बहुत नीक लगा था आपसे बतियावत का इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी बहनी लोगन के दे थी और वो विषय पर ध्यान उनकर केंद्रित करे का कोशिश करत थी जे पर की केहू ध्यान भी नहीं देत रहला। चलत चलत बहनी लोगन से का कहो?
1: मैं कहूंगी कि अपनी चुप्पी को तोड़िए, अपनी थकान को समझिए, उसको इग्नोर मत करिए, तुरंत अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपको किसी भी तरह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आप अपने प्रोफेशनल हेल्प के लिए आपको जाना चाहिए।
0: बहुत सही बात आप कहतीन बहनी लोगन, ध्यान दें ये बात पर जैसन की बतैलिन है डॉक्टर पूजा साहू बहन। तो आप लोगन ये बात पर अगर ध्यान रहब तो पूरी तरह से स्वस्थ रहब और सुखमय जीवन बिता सकब अपने परिवार के संगे। तो डॉक्टर पूजा साहू जी, आप हमारे कार्यक्रम में अलिन और महिला लोगन के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में इतना निक निक जानकारी देलिन, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा दीदी, डॉक्टर पूजा साहू से शिखा श्रीवास्तव बहनी कितना नीक का जानकारी का बात सुनवैलू है कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है। देखा डॉक्टर बहनी बताइले ना कि कभी भी कौनो भी काम बदे ना कहे सीख लें, जरूरी ना हो कि आप हर काम हाँ कर दें कि नहीं हम करब, और एकरे साथे साथे देखा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने लिए समय निकालें, सवेरे संध्या के समय अपने लिए समय निकाले, योग व्यायाम करें। और देखा डॉक्टर बहनी ये भी कहली ना कि देखा महिला लोगन अपने परिवार का धुरी होली, ये लिए उनकर स्वस्थ रह बहुत जरूरी है। जब वो अपन स्वस्थ रही तब वो अपने लड़का बच्चा घर परिवार खातिर कर पाई।
3: कुल मिला के कहे के मतलब ये है कि अगर शरीर थक जात है बहन लोग का काम करत करत, तो ओके बहुत ज्यादा खींचे ना ही, थोड़ा सा अपना शरीर के आराम भी देवे के है। और देखा हो लाजो,
2: हाँ दी,
3: अब हमने का बहिन लोग इंतजार करत हुई कि खाली बतियाबे करी लोग, कुछ मनो मन साइन करी लोग, आ सीजन भी चला था शादी विवाह का,
2: तो कहे ना दीदी बहनी लोगन के निके का ब्याह का गीत सुनवा देवल जाए।
3: तो सुनवाई दा
2: मालिनी अवस्थी की आवाज में।
4: बाबा लखिया के बादशाही।

0: देखा दीदी कितना नीक का गीत सुनवैलू है मालिनी अवस्थी के आवाज में। आ देखा जेकरे घरे शादी विवाह होई ओके तो और भी आनंद आ गल होई।
1: सही कहत हो, वो बड़ा नीक गीत रहला, सुन के मन प्रसन्न हो गई। आ बहिन लोग के भी बड़ा नीक लागल होई कि एगो मेहंदी का कितना नीक का गीत सुनवाई दिहल गई है। आ सीजन भी देखा न लाजो, शादी ब्याह का चलत हो, सबके वो आवत जात रहत है, लेकिन ये शादी ब्याह में अपन खान पान का भी ध्यान दिहल बहुत जरूरी है। काहे से कि ये मौसम ऐसा है ना कि थोड़ा सा भी इधर उधर खा ल तुरंत स्वास्थ्य पे असर पड़ी, और हमनी के स्वास्थ्य का ही बात करत रहनी है जा। आ ये समय देखा जोन सीजन चला था ना, जितना हो सके उतना पानी वाला फल खाए के कोशिश करे के चाहिए।
0: पानी वाले फल का बात करें तो देखा बाजारे में ये समय खीरा बहुत ज्यादा मिलत हो, जहाँ देखा वहाँ खीरा मिलत है। तो देखा बहनी लोगन ओके लिया के अपने भी खाए, अपने लड़का बच्चा के भी खिया। देखा खाए के साथे साथे दीदी इनमें कौन कौन सा विटामिन तत्व पावल जाला एकर भी जानकारी रखल बहुत जरूरी है। तो देखा इनमें और ये तो पानी वाला सबसे पहले तो देखा एक एक खैले से शरीर में पानी का कमी पूरा हो जाला, साथे में त्वचा में निखार होला, वजन भी घटाए में ये बहुत मददगार करला, पाचन के लिए भी ये बहुत अच्छा होला। और देखा जो अपन ब्लड प्रेशर बढ़ जाला, शुगर कंट्रोल होला, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होला, बाल के लिए भी बहुत अच्छा होला।
1: सही कहा था वो, कुल मिला के कह कि एक बहुत फायदा है, और खैला का भी बहुत तरीका है, चाहे सलाद बना के खा, चाहे रायता बना के खा। और ये समय अगर सफर में निकला था आदमी तो अगर काट के कोनो डिब्बा में करके अच्छा से रख ला, नमक उमक लगा ला, तो बहरे के खाए से अच्छा है कि अपनहू खा और लैकनों के खियाव, प्यासो कम लगी और सेहत भी बनल लगी
0: एकदम दीदी। देखा खान पान का बात करत है दीदी, तो देखा अभी हम लोगन शादी ब्याह का भी बात करत रहे, लेकिन आजकल देखबो शादी ब्याह में तो जो लोग अन्न का अपमान करत हैं, जितना खाए के हो उतना अपने थरिया में खाना लेवे, फालतू में व्यर्थ न करें। कहें से कि अन्न में भी देवता का वास होला,
1: एकदम सही बात,
0: अपमान न करे के चाहिए।
1: कहीं न कहीं कहीं कि जोन महिला होनी उनके कहल जाला कि वो खुद ही साक्षात अन्नपूर्णा होनी, तो उनके भी सबका ख्याल रखे के चाहिए, और साथे साथे अपने घर परिवार बच्चा सबके सिखावे के चाहिए। और देखा वो शादी में जा तो नहीं जाना तो देखे के मिलेला कि पतले में खूब आदमी ऊपर से खाना भर पत्तल बोझ लेता, और ओके खाए के जितना मन हो उतनी खाई और ले जाके कूड़ा में डाल दी। लेकिन एक बार भी वो ना सोचेला कि जेकरे घरे हम आयल हैं वो कितना मतलब मेहनत से वो इतनी व्यवस्था कैले है, इंतजाम कैले है आदमी के खिलाए बदे, तो उतने खाएं जिसे नुकसान ना हो के जे खाना बच जाए वो दूसरा के दिया जाए, जे गरीब दुखिया है ओकरो के भी मिल जाए।
0: एकदम दीदी देखा हर कोई के नसीब में भरपेट खाना नहीं होला, आपके मिल पावत हो भरपेट खाना तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो अन्न का अपमान बिल्कुल ना करें, और देखा एकरे साथे साथे आप अपने लइकन बच्चन के भी सिखाएं,
1: बिल्कुल
0: अपने घर में खुद जो ऐसा व्यवहार करवा वैसा आपका लइकन बच्चन भी देख के करिया।
1: अगर घर में मान लो गोरू चौवा बाना एक दो रोटी बच जाता तो बच्चन के वो भी सिखाए के चाहे कि वो ले जाके तू जानवर के दे दा, लेकिन इधर उधर कूड़ा में ना फेंका, उससे अन्न का अपमान होला, और समय ना जाने ला केहू भी कि कब के एक रोटी का मोहताज होके के।
0: एकदम दीदी देखा गोरू चौवा का बात कहलू ना दीदी, तो कई जने गोरू चौवा के देखा अपन बासी खाना डाल दे वाले, देखा बहुत दिन का बासी खाना न डाले के चाहिए, कहे से कि उनका भी स्वास्थ्य खराब होला, उनके भी सब चीज नुकसान कराला। बाकी कही दीदी कि देखा बतियावे का तो बहुत मन करत हो, लेकिन देखा आप घड़ी भी इशारा करत हो कि हम लोगन के चले का समय हो, तो चला चलन जी बहनी लोगन से विदा लेवन जाई।
1: नमस्ते, नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं खरपत राम और साथी। तो आइए सबसे पहले इनके स्वर में सुनते हैं ये लोकगीत छपरैया।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं खरपत राम और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे इनका गाया छपरैया, और अब आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में खेमटा।

खरपत राम और साथियों के स्वर में आज आप सुन रहे हैं लोक संगीत। अभी सुन रहे थे खेमटा और अब आइए इन्हीं के स्वर में आपको सुनवाते हैं इनका गाया विदेशिया लोकगीत।

खरपत राम और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे विदेशिया लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि

0: newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा করিব।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे।

मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी।

0: भक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिन

0: दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
4: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 200

41.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर, कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जय बे बिनार झूलनी, हम गवन मनाही जय।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

वो कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, मां की आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। हृदय को भेदने वाली मुनव्वर राना की ये पंक्तियां इस धरती पर मां के दर्जे को बखूबी बयां कर रही हैं। मां शब्द लिखने और बोलने में तो जरा सा लगता है, लेकिन उसका अस्तित्व और उसका व्यक्तित्व समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, जिसे समझने के लिए कितने भी गोते लगाए कम पड़ जाएंगे। माँ भगवान द्वारा भेजा गया फरिश्ता है, वो हमारी पहली शिक्षिका है, दोस्त है, मार्गदर्शिका है। माँ धूप में ठंडी छांव है तो सर्दी में गुनगुनी धूप है, वो हमारे होने का एहसास है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए खुद को बुझा लेती है। वो अपनी इच्छाओं, सपनों और खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों के लिए सपने बुनती है। ऐसे में बच्चों का फर्ज है कि अपनी माँ को विशेष महसूस कराएं, और इसी के लिए, इसी खास दिन के लिए आता है मदर्स डे, जो कल मनाया जाने वाला है। और आज इस गीतांजलि में बातें उसी माँ की।

जो हर वक्त आस पास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि आखिरी सांस तक हमारे साथ साथ परछाई बनकर चलने वाली, बिना कुछ कहे हमारे मनोभावों को समझने वाली माँ के प्रति हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उसकी खुशियों का ध्यान रखें, उसके सपनों के बारे में जानें, उसे क्या करना पसंद है उससे पूछें, अपनी माँ के साथ थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए अपने साई के रूप में माँ भेजी, जो हमारी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती है। बच्चे पर आंच आए तो सीधी और सरल दिखने वाली माँ चंडी बन जाती है। माँ के न रहने पर पूरा घर अकेला हो जाता है। माँ वो हस्ती है जिसका इस संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

हम दुनिया में चाहे कितने भी रिश्तों से क्यों न बंधे हो, माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को हमसे कुछ पाने की लालसा रहती है, लेकिन माँ और बच्चे का संबंध ऐसा होता है जहाँ माँ बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के अपनी संतान को सिर्फ देना जानती है। बच्चे की सफलता के पीछे भी माँ का संघर्ष और समझ होती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती।

हमारे जीवन में प्रेम का बड़ा महत्व है। इस बात का एहसास मां को देखकर होता है। कई बार जब लोग कहते हैं कि तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे मां से मिलती है, तो मुझे आश्चर्य भी होता है और गर्व भी। इस प्रशंसा से मेरा मन गदगद हो जाता है। लेकिन यदि कहूं तो अपनी मां से प्यार करने का तरीका, रिश्ते निभाने की समझ, हिम्मत न हारने का साहस, हर परिस्थिति में डटे रहने की ताकत और साफ दिल रखने की नीयत विरासत में मिली है मुझे। लेकिन ये कहना जरूरी होगा कि मैं इन सभी बातों में कभी मां की बराबरी नहीं कर सकता। मां का स्नेह निस्वार्थ होता है, जो संतान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की ताकत रखता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो एक मां की तरह प्रेम करना जानता हो, और इस बात की अनुभूति मुझे मेरी मां को देखकर होती है।

और अब दोस्तों कुछ लाइनें उस बूढ़ी माँ के लिए। वह लेटी थी शांति की परत ओढ़े, लेकिन वह शांति किसी थकी हुई युद्ध भूमि जैसी थी। चेहरा वह जो वर्षों तक मुझमें जीवन फूंकता रहा, अब स्वयं जीवन से रिहा होना चाहता था। मैं बैठी रही उसके सिरहाने, कुछ न कहते हुए, क्योंकि कहने लायक कुछ नहीं था। मैं चाहती थी तुमको रोकना या कहना कि माँ रुको, या माँ लौट आओ उस रसोई के कोने में जहां तुम सर्दियों की धूप सी बैठा करती थी, लेकिन उस पल शब्द नहीं मौन अधिक सच्चा लगा मुझे। बीमारी माँ को नहीं खा रही थी, वह केवल माँ की उस भूमिका को धो रही थी जो उसने सालों तक निभाई थी बिना एक क्षण रुके। मैंने उसकी आंखों में झांका, वहां कोई दुख नहीं था न पीड़ा, केवल एक दीर्घ प्रतीक्षा, जैसे कोई नदी सागर में मिल जाने से पहले थोड़ा ठहर जाए अपना किनारा एक बार और देखने के लिए। माँ की बीमारी एक देह की बात नहीं थी, वह एक भूमिका का विदा लेना था, एक मौन त्याग, एक अव्यक्त प्रेम का अंतिम आलोक।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DRM 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम नन्हे दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। मैं हूँ आपकी दीदी शबनम।
1: और मैं हूँ साथ में आपकी दीदी इला।
0: और बच्चों देखिए, अब छुट्टियां होने वाली हैं और कुछ सोच के रखा है आपने कि छुट्टियों में क्या करना है?
1: शबनम दी, बच्चे तो इसमें खूब सारी प्लानिंग करके रखे होंगे। हाँ। वे छुट्टियां हैं तो ये करना है, वो करना है, घूमने जाना है, बहुत सारे काम उनके होंगे जो सोच के रखा होगा कि वह छुट्टी हो जाएगी तो आराम से ये सारी हॉबीज अपने पूरी करेंगे।
0: और हमको तो लगता है बच्चों कि आपको ढेर सारा होमवर्क भी मिला होगा ना, तो ऐसा करिए कि कुछ दिन जो है शुरू के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, उसके बाद फटाफट अपने सारे होमवर्क कर लीजिए।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई घूमने जा रहे हैं तो फिर जहां घूमने जा रहे हैं वहां के बारे में भी आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करिए और वहां क्या नया देखा, क्या वहां भी बड़ी चीजें हैं उसको जानिए। और जो बच्चे नहीं घूमने जा रहे हैं उनके लिए भी है कि भाई आप अपने जो भी कोई हॉबीज या कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका भी सदुपयोग इन छुट्टियों में कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। देखिए बहुत सारे वर्कशॉप स्टार्ट हो जाते हैं ना, आसपास आपके कोई हो जहाँ पे आप सिंगिंग का कुछ कोर्स कर सकते हैं, कुछ ड्रामा बच्चे सीखना चाहते हैं, कुछ और भी चीजें करना चाहते हैं, और ये सारी चीजें आप खुद भी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मम्मी पापा भी सजेस्ट कर दें।

0: कुछ बड़े भैया दीदी कर दें, कुछ हम लोग कर दें, है ना।
1: बिल्कुल, कुछ नन्हे साथी भाई हमारी छुट्टियों में जा रहे होंगे अपनी दादी के यहाँ या नानी के यहाँ जा रहे होंगे, तो भाई ये भी एक अच्छी बात है कि भाई साल भर तो हम लोग सबसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन छुट्टियों के समय में अपने जो खास होते हैं वहां जाते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए और इन छुट्टियों का सदुपयोग आप इसी तरीके से करिए कि भाई जिनसे आप साल भर नहीं मिल पाते हैं, जो काम आप साल भर नहीं कर पाते हैं, उनको भी कीजिए।
0: और देखिए दीदी, ऐसा भी हो सकता है ना कि बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन मम्मी पापा की छुट्टी नहीं है, है? तब ऐसे में बच्चे घर में रह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप घर में कुछ नया बनाना सीख सकते हैं, आसपास हरियाली लाने के लिए कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कुछ नया नया सा सीख सकते हैं। और आजकल तो बच्चे एक दूसरे से फोन पे भी बात कर लेते हैं ना, और ऐसे भी आप बातें करके कुछ नया सीख सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे साथ एक प्यारा सा गीत सुन लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: la la la la la la la.
1: दीदी देखिए गीत तो बहुत प्यारा सा था और बच्चों को भी अच्छा लगा होगा, लेकिन हमारे साथ ना रोचक दीदी भी हैं।
2: हाँ, अपनी जानकारी का पिटारा लेकर के। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी रोचक दीदी अपने पिटारे में से कौन सी जानकारी निकाल रही हैं।
3: बच्चों नमस्ते, रोचक दीदी आ गई है आज फिर लेकर जानकारियों से भरा अपना पिटारा। तो आज रोचक दीदी के पिटारे से क्या निकलेगा? तो सुना आपने बच्चों, इस आवाज को सुन के क्या याद आया? अरे भाई, जब छुट्टियां होती हैं तो अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा मौसी या अपने गांव जाने के लिए हम किस परिवहन माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? अरे भाई, आपकी और हमारी पसंदीदा ट्रेन, और क्या। तो चलिए आज इसी ट्रेन में बैठकर थोड़ा समय में पीछे चला जाए और आपको बताएं कि अपने देश भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। बच्चों, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, है ना? वैसे सामान पहुंचाने के लिए भी ट्रेन का उपयोग किया जाता है, और समय के साथ ट्रेन में और स्टेशन्स पर जो सुविधाएं हैं उनमें काफी बदलाव आया है। आपको बताएं बच्चों, भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। देश में पहली ट्रेन साल 1853 में चलाई गई। 16 अप्रैल साल 1853 के दिन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी पहली भारतीय यात्री ट्रेन। और अब आप पूछेंगे कि विश्व की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी दीदी? तो आपको बताऊं, 27 सितंबर 1825 के दिन विश्व की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बच्चों, कोयले और भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 27 सितंबर 1825 के दिन भाप इंजन की सहायता से रेल के डिब्बों को खींचा गया जिसमें कई यात्री सवार थे। इंग्लैंड के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन के बीच चलाई गई थी ये ट्रेन। जरा सोचिए तो, आज नई टेक्नोलॉजी के चलते ट्रेनों की रफ्तार बेहद तेज हो गई है और ट्रेनें भी कई प्रकार की हो गई हैं। थोड़ा उस समय के बारे में सोचिए बच्चों, जब पैदल या घोड़ा गाड़ी पर चलने वाले लोग पहली बार ट्रेन के डिब्बों में बैठकर सफर के लिए चले होंगे। कितनी रोमांचक यात्रा रही होगी वो, है ना? वैसे आज भी ट्रेनों की यात्रा कम रोमांचक नहीं है भाई। जब ट्रेन के डिब्बे सरपट इंजन से लगकर दौड़ते हैं और खिड़की से बाहर झांकने के बाद पेड़ मकान पशु पक्षी सब पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो बस लगता है कि हमारी ही रफ्तार सबसे तेज है। आज भी ट्रेन का सफर बेहद रोमांचित करता है। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आप ट्रेन से कहाँ जाएंगे? सोचिएगा जरूर। फिलहाल रोचक दीदी अपना पिटारा आज यहीं समेटेगी, फिर से आपसे मिलने आऊंगी। बाय बाय।
1: बच्चों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी फिर आपके लिए लेके आएंगी रोचक दीदी। और आज ना एक और बात बच्चों से करना है कि जब हम लोग छुट्टियों की प्लानिंग की बात कर रहे थे ना दीदी, तो देखिए बहुत सारी चीजें हमारे घर में भी होती हैं,
2: बिल्कुल,
1: और जिसे हम समझते हैं कि ये वेस्ट है, बेकार है, लेकिन उनसे भी बेस्ट चीजें बनाई जा सकती हैं।
2: हाँ, अगर हमारे जो नन्हे साथी

0: छुट्टियों का सदुपयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि घर में क्या चीज ऐसी है जो कि बेकार पड़ी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं, कुछ नए तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज है जो वेस्ट है, उससे आप बेस्ट से बेस्ट बनाइए।
1: देखिए, आपकी जो पुरानी वाली कॉपी होगी ना, उसके बहुत सारे पेजेस होंगे,
0: बिल्कुल,
1: और उन पेजेस को आप मोड़ लीजिए, ऐसे जैसे कि स्टिक मोड़ी जाती है ना, पाइप जैसा, वैसा मोड़ लीजिए, ढेर सारी बना लीजिए स्टिक। उसके बाद आप किसी भी पुराने डिब्बे को या मोटी सी बॉटल हो पानी वाली, उसको छोटा सा काट के सारे पेपर्स के जो है ना स्टिक बनाइए, उसको चिपका लीजिए। उसके बाद फिर उस पर कलर कर दीजिए, और जो एक्स्ट्रा होगी ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी होगी ना, तो उसको काट दीजिए, और
0: बराबर कर
1: देखिएगा
0: ले।
1: फिर आपको लगेगा जैसे ये बैम्बू का बना हुआ बॉक्स है। उसमें
0: वाह,
1: आप पेंसिल रखिए, अपनी सारी चीजें रखिए, और सबसे बड़ी बात ये ना कि आपकी जो कॉपी के पेजेस हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, और
0: बिल्कुल।
1: फिर लगेगा कि वाह कितनी अच्छी चीज बन गई ना।
0: लेकिन दोस्तों, बस हम आपसे ये कहेंगे कि छुट्टियों का सदुपयोग कीजिए, सो करके टीवी देख करके समय को बर्बाद मत कीजिए। शबनम दी, भाई घड़ी भी अब हमें इशारा कर रही है, बता रही है कि समय हो चला है।
1: हाँ, तो हम चलते हैं और बच्चों को कहते हैं जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

बच्चा भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी।

0: जब विचार स्वतंत्र हों, हृदय में स्वाभिमान की ज्योति जलती हो और कदम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ें, तभी जीवन सच में महान बनता है।
1: बिल्कुल सही कहा। साहस हमें झुकने नहीं देता, संवेदनशीलता हमें जोड़ती है और प्रकृति हमें सिखाती है कि ऊंचाइयां वही छूते हैं जो अपने मूल से जुड़े रहते हैं।
0: इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसमें आज आपके साथ हैं मैं स्नेह
1: और मैं हर्षिता।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, ज्ञान, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं।
6: अपने शब्दों और विचारों से जिन्होंने पूरे विश्व को नई सोच दी, आज हम ऐसे ही महान विभूति गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मना रहे हैं।
5: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, लेखक और विचारक थे। उनकी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति और मानवता की सुंदर झलक दिखाई देती है।
6: हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन भी उनकी ही रचना है। उनकी प्रसिद्ध कविता एकला चलो रे आज भी लोगों को कठिन परिस्थितियों में हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों,
5: उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और प्रेम सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज उनके जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं।
6: शब्दों और विचारों की प्रेरणा के बाद अब समय है वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस की उस गाथा को याद करने का जिसने इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी।
5: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के

0: की प्रेरणा के बाद अब समय है वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस की उस गाथा को याद करने का जिसने इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की, जिनकी जयंती हमें साहस और आत्मसम्मान का संदेश देती है।
0: महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। कठिन समय में भी उन्होंने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा को सबसे ऊपर रखा। दोस्तों,
1: हल्दीघाटी का युद्ध आज भी उनके पराक्रम और वीरता की कहानी सुनाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो हर मुश्किल में अपने कर्तव्य और सम्मान के लिए डटा रहे।
0: महाराणा प्रताप का जीवन आज भी युवाओं को साहस, देशभक्ति और आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है। आइए उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करें और उनके साहस से प्रेरणा लें। अच्छा, जानती हो हर्षिता, आज का दिन बेहद खास है।
1: और वो क्यों? हाँ, याद आया स्नेह, मुझे पता है, आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है और महाराणा प्रताप जयंती भी है।
0: अरे हर्षिता, तुम कुछ भूल रही हो, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी तो है।
1: अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया।
0: दोस्तों, हर साल हजारों पक्षी लंबी दूरी तय करके एक देश से दूसरे देश तक आते हैं और प्रकृति की सुंदरता को और भी खास बना देते हैं।
1: अपने शहर बनारस में ही देख लीजिए दोस्तों, सर्दियों के मौसम में गंगा किनारे और आसपास के जल क्षेत्रों में कई साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं, जो कि वातावरण को और भी सुंदर बना देते हैं।
0: दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमें इन पक्षियों और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देता है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर पेड़ पौधों और जल स्रोतों की रक्षा करने का संकल्प लें, ताकि ये खूबसूरत पक्षी हमेशा सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट को और जानते हैं हमने आपसे क्या बातचीत की।
2: हेलो
3: हेलो,
2: स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। आपकी बात स्नेह से हो रही है। आपका नाम?
3: मेरा नाम प्रीति खन्ना है।
2: जी प्रीति, कैसी हैं आप?
3: मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
2: मैं भी अच्छी हूँ। प्रीति, क्या आप जानती हैं हमारे आज के यूथ जंक्शन का टॉपिक क्या है?
3: जी, ऐसे डिटेल में तो नहीं पता, बट या कुछ हेल्थ से रिलेटेड है।
2: जी प्रीति, तो हमारे आज के यूथ जंक्शन का टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल कितना जरूरी है। तो प्रीति, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ सब लोग काम में और पढ़ाई में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि आजकल के समय में हमें हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना कितना जरूरी है?
3: पहले तो अभी की जो लाइफस्टाइल हो गई है वो शॉर्टकट पे होती है, मतलब हम निकल तो जाते हैं लेकिन हमारा डाइट क्या है, हमें क्या खाना है, हमें कुछ नहीं पता होता, जिससे हमारा फिजिकल हेल्थ तो खराब हो ही रहा है, साथ में मेंटली भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते जा रहे हैं। सो मेरी राय यही है कि जब भी हम निकलें तो हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह या अपना ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, और चीजें मेंटेन या बैलेंस करके चलनी चाहिए, क्योंकि वो चीज हमें ही आगे प्रॉब्लम देगी।
2: जी जी, तो आप अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करती हैं?
3: मैं कभी भी खाली पेट घर से नहीं निकलती। अगर मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, अगर मैं बाहर हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जैसे कोई फ्रूट्स खा लूँ या कोई जूस पी लूँ या फिर वाटर इनटेक अपना प्रॉपर लेती रहूं, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव वगैरह, और मौसम भी बहुत ज्यादा जल्दी बदल रहा है, तो उसके लिए बेसिकली प्रिपेयर रहना ही मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहता है।
2: जंक फूड से बचने की कोशिश करती हैं?
3: कोशिश तो करती हूँ पर हो नहीं पाता है।
2: जी जी, और एक्सरसाइज या व्यायाम, ऐसी कोई चीजें जो आप करती हो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए?
3: एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम में थोड़ा जिम वगैरह।
2: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और क्या आप ये समझती हैं कि आजकल फोन का लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने से लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है?
3: 100%, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है वो ऑलरेडी एआई पे बेस्ड है, तो हम जो देखते हैं ना वो ही हमारा माइंड परसीव करता है, तो हम उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। हम अपना रियल लाइफ जो है वो छोड़ करके दिखावटी ज्यादा बन चुके हैं, मतलब जो हमें लगता है कि हम इसे बहुत सुपीरियर दिखेंगे, आई थिंक कि लोग अब उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रेदर देन कि वो अपने आप को शोकेस करें हर जगह।
2: जी, मतलब
3: तो प्रेशर दे रहा है हर जगह से।
2: जी, तो मतलब आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारी मेंटल

0: हेल्थ को अफेक्ट करता है।
1: 100%।
0: आपको ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया से हम ज्यादा अवेयर होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है?
1: अवेयर तो हम होते हैं, पर क्या होता है ना, हम ध्यान नहीं देते उस पे। हम पोस्ट देखेंगे, उस टाइम तक हम ये रहेंगे कि हाँ हम कल से चेंज ला देंगे, हम ये कर देंगे, पर हो नहीं पाता क्योंकि हमारा लाइफ ही इतना बिजी स्केड्यूल में चल रहा होता है कि हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते।
0: जी, तो आप क्या युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें युवा?
1: मैं बस यही मैसेज दूंगी सारे यूथ को कि जब भी आप बाहर निकलो, हाइड्रेट रहो, ज्यादा मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और बस बैलेंस रखो अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को, उससे आपका काम भी अच्छे से होगा और आप भी अच्छे से रहेंगे।
0: जी, अंत में प्रीति, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से कोई अपना पसंद का गीत सुनना चाहती हो तो हमें जरूर बता दें।
1: हमारी पसंद का गीत चलो दिलदार चलो, ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, थोड़ा ओल्ड है पर बहुत फेवरेट सॉन्ग है।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार। यूथ जंक्शन में आपका स्वागत है। और यूथ जंक्शन में आज मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। आपका शुभ नाम? पुष्पा
1: पुष्पा सिंह।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: आपके तरफ का मौसम कैसा है?
1: इस समय तो गर्मी ठंडी दोनों लिए है।
0: जी, आपको हमारे विषय के बारे में पता
1: जी नहीं,
0: है? कोई बात नहीं पुष्पा जी, हम आपको आप आज के विषय के बारे में बता देते। तो हमारा आज का विषय है, वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल कितना जरूरी है। तो आपको पता है कि इस समय मौसम बहुत गड़बड़ चल रही है, कभी ठंड तो कभी गर्मी। तो हमें
1: जी
0: अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, थोड़ा बता सकती हैं?
1: देखिए, ठंडी
0: बताइए।
1: गर्मी को देखते हुए अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। जैसे फ्रिज का पानी इस समय नुकसानदायक है, सुबह हवा लीजिए, फल आदि का प्रयोग कीजिए, खाना कम खाइए और हल्का आहार कीजिए।
0: जी, बिल्कुल। आपके अनुसार हेल्दी लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है?
1: स्वास्थ्यवर्धक चीज ग्रहण करना काफी जरूरी है। जैसे इस समय आदमी मट्ठा अट्ठा का भी प्रयोग कर ले रहा है, सुबह दलिया प्रयोग करके खा के निकल जा रहा है अपने कार्य पे, फिर बीच में लंच आदि कर रहा है। जहाँ 4 रोटी खाना चाहिए वहाँ 2 ही 3 रोटी खाइए। थोड़ा हल्का करेंगे, कम करेंगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाना खाएं तो नींद भी आने का आशंका रहता है। और इस समय गर्मी और ठंडी दोनों है तो शरीर कम पचा भी रहा है।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने पुष्पा जी। आपकी नींद का समय कितना नियमित है पुष्पा जी?
1: नींद का समय तो अपने वर्क पे निर्भर होता है। वैसे हर इंसान को सुबह 3 से 5 के बीच में उठना चाहिए और ज्यादातर 5 बजे उठ जाना चाहिए, बिस्तर त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। काफी 5-6 घंटा तक कम से कम नींद आना चाहिए
0: जी
1: और नींद
0: बिल्कुल।
1: पूरा न होने पर स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है।
0: क्या नियमित व्यायाम करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों?
1: जरूरी इसलिए है कि व्यायाम करने से स्वास्थ्य हल्का महसूस होता है, फुर्तीला महसूस होता है, आरामदेह रहता है। अक्सर करके लोग कहते हैं मुझे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, प्रॉब्लम है। ये सभी प्रॉब्लम उसी एक्सरसाइज से ही दूर, व्यायाम से ही दूर हो सकता है। दवा आप
0: जी
1: ना करें,
0: जी
1: दवा
0: जी
1: कम से कम ग्रहण करें और व्यायाम ज्यादा से ज्यादा।
0: इसी के साथ हमारा आपसे अगला सवाल है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य भी हेल्थी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है?
1: जी बिल्कुल हिस्सा है,
0: कैसे?
1: क्योंकि आप व्यायाम करते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो मानसिक तनाव कम भी महसूस होता है, ओढ़ने के बाद भी महसूस नहीं होता है। जहाँ तक कि मन हटता है वहीं जाने पे कोई भी चीज का टेंशन, पढ़ाई हो, सर्विस आदि में हो, या तो अपने घर का होमवर्क हो, कुछ भी हो, पूरे कार्य हो, तो जहाँ यदि माइंड पे आदमी का प्रेशर पड़ता है, यदि आप व्यायाम करते

0: हैं और नियमित अपना कार्य करते हैं तो थोड़ा सा हल्का आपको महसूस होगा और आराम भी होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जैसे कि आपको पता है पुष्पा जी कि हम अपने श्रोताओं का पसंदीदा गीत सुनाते हैं उन्हें, तो आप अपना पसंदीदा गीत हमें बता दीजिए।
0: हाँ, तो मुकेश जी का भी सुना दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ हेलो।
0: स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। आपकी बात स्नेह से हो रही है। आपका नाम?
1: मेरा नाम मंजीत कौर है जी।
0: जी मंजीत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये बनारस लहर तारा बनारस से बोल रहे हैं
0: जी मंजीत जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी। हम अच्छे, आप कैसे हैं?
0: जी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मंजीत जी, क्या आपको हमारे आज के यूथ जंक्शन का टॉपिक पता है?
1: हाँ नहीं, आप बता दें।
0: तो हमारे आज के यूथ जंक्शन का टॉपिक है कि हेल्दी लाइफस्टाइल कितना जरूरी है। तो मंजीत जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के हैक्टिक लाइफस्टाइल में आप अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखती हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए कितना जरूरी है?
1: आजकल के इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में तो हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है।
0: जी, आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपने आप को सही रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अब मैं तो ऑफिस में वर्क भी करती हूँ तो मैं अपने को हेल्दी रखने के लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, थोड़ा बहुत योगा करती हूँ और फिर मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ।
0: जी, तो कुछ
1: और
0: खान पान पे
1: खान
0: विशेष
1: पान
0: ध्यान
1: भी,
0: या सोना समय
1: हाँ,
0: से?
1: खाना पीना भी कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा कि आपको फिट भी रखे, अंदर से एनर्जी भी दे। तो खाना ऐसा खाना चाहिए और पानी भी कुछ अधिक पीना चाहिए, क्योंकि अपने को हेल्दी रखने के लिए पानी भी ज्यादा चाहिए। तो बस यही सब करती हूँ।
0: जी, और कुछ योगा या एक्सरसाइज?
1: योगा भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, योगा भी थोड़ी बहुत करती हूँ। और ऑफिस में मेरा वर्क बैठने का रहता है, इसकी वजह से जब मैं छूट के जाती हूँ तो थोड़ा सोचती हूँ कि वॉक करके जाऊँ, तो
0: जी
1: इसकी
0: जी
1: वजह से मैं थोड़ा बहुत वॉक भी कर लेती हूँ। और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए तो खान पान तो हेल्दी होना ही चाहिए, के लिए मैं रोटी कम खाती हूँ, ऐसी चीज खाती हूँ जिससे थोड़ा हेल्दी रहूँ,
0: जी
1: यही।
0: जी और बताइए कि जैसे आजकल के समय में लोगों को नींद पूरी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल, वो हेल्दी नहीं रह पाते हैं। लाइफस्टाइल के कारण उनकी नींद सही
1: जी
0: नहीं होती है, तो नींद के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितनी नींद जरूरी है?
1: नींद तो जरूरी है, नींद तो 7-8 घंटे की जरूरी हो रही है
0: जी, तो
1: तो
0: क्या आप 7-8 घंटे नींद ले पाती हैं?
1: हाँ ले ही लेते हैं। 7-8 घंटे की नींद तो हो ही जाती है, और नींद जब तक नहीं पूरी होगी तब तक आप हेल्दी रह ही नहीं सकते हैं। तो
0: जी
1: आपको
0: जी
1: हेल्दी और फिट रहने के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, और दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी भी पीना होता है।
0: जी,
1: तो
0: हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मंजीत जी। तो
1: मुझे भी आपसे
0: अंत
1: बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: जी तो अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे माध्यम से आप कोई गीत सुनना चाहें तो हमें जरूर बताएं।
1: हाँ लता मंगेशकर का एक गीत सुना दीजिए। थैंक
0: जी, हम पूरी कोशिश करेंगे लता मंगेशकर जी का गाना आपको सुनाने की।
1: यू,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: स्नेह, क्यों ना हमारे दोस्तों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद किया जाए और उन्हें हमारे कल के QOTD यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स के नाम बताए जाए।
1: हाँ बिल्कुल हर्षिता, तो आइए दोस्तों फटाफट से आपको कल का पूछा गया सवाल एक बार फिर से बता देते हैं।
0: और हमारा कल का सवाल था कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है, और इसका सही जवाब है आकाशवाणी।
1: और ये रहे विनर्स के नाम। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेखा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड, नर्मदानगर, मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा और चंदा चंदौली से। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ।
0: चलिए अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी जान लेते हैं। हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि आकाशवाणी नाम देने का श्रेय किस महान कवि व साहित्यकार को दिया जाता है?
1: दोस्तों जल्दी से आपके आंसर्स लिख भेजिए हमारे युववाणी के यूथ AER वाराणसी इंस्टाग्राम हैंडल पर।
0: या फिर आप अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आपको कुछ बताना चाहते हैं।
1: दोस्तों आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, कई बार इतिहास भी बनाती हैं। और ऐसी ही एक आवाज है आकाशवाणी की, जिसने पिछले 90 वर्षों से भारत की धड़कनों को पूरे देश तक पहुंचाया है। इसकी शुरुआत 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में हुई थी। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कहा गया और 1957 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी कहा जाने लगा। गांव की मिट्टी की खुशबू से लेकर शहरों की रफ्तार तक, संगीत से लेकर समाचार तक और संस्कृति से लेकर युवा सपनों तक, आकाशवाणी हमेशा भारत की पहचान बनी रही है और आगे भी इसी तरह बनी रहेगी।
0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है एक प्यारे से गीत का।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 0542227658।
5: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658।

0: 2-7-6-5-8।
1: दोस्तों अब वक्त हो गया यूथ डायरी से आज के नए शब्दों को जानने का। तो आज का हिंदी शब्द है विनियम। इसका अर्थ है किसी संस्था, सरकार या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कानूनी निर्देश या नियम। इसके पर्यायवाची है नियम, कानून, नियमन, शासन, उपविधि और नियमावली। इसे वाक्य में कुछ इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त विनियम बनाए गए हैं, या फिर यातायात के विनियम का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है।
2: दोस्तों और आज का इंग्लिश वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, ICONOCLAST। इसका अर्थ है मूर्ति भंजक, रिवाज तोड़ने वाला या स्थापित मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक प्रतीकों पर सवाल उठाने या उन्हें नष्ट करने वाला व्यक्ति। इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ पर्सन हु चैलेंजेस और रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कस्टम्स और एस्टैब्लिश्ड आइडियाज। वी कैन यूज द वर्ड आइकोनोक्लास्ट इन सेंटेंसेज इन दिस वे। ही इज एन आइकोनोक्लास्ट हु चैलेंजेस ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग। Or we can say, the scientist was known as an iconoclast for rejecting outdated theories.
1: दोस्तों अब वक्त हो गए आज के इतिहास के बारे में जानने का, क्योंकि इतिहास की बातें ही तो हैं जो हमें बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा देती हैं।
2: आज के दिन वर्ष 1653 में विश्व विख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद हुआ।
1: वर्ष 1874 में मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्रामकार शुरू हुई।
2: सन 1947 में विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया।
1: साल 2003 में गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एंडसेंस पेश किया।
2: इसी के साथ दोस्तों भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वर्ष 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, बारी है आज के रोजगार सूचना के बारे में जानने की, जो कि आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के कुल 731 पदों की रिक्तियां जारी की हैं।
1: जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदों के अनुसार 27 और 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 15 मई 2026 सुनिश्चित की गई है।
0: इच्छुक अभ्यर्थी संपूर्ण जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, आज आपसे अलविदा लेने से पहले हम भारत की एक और महान हस्ती की जयंती पर उन्हें याद करने जा रहे हैं, और वो हस्ती हैं गोपाल कृष्ण गोखले।
1: 1866 में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रखर विद्वान, शिक्षक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग को अपनाया था।
0: इसके साथ ही दोस्तों, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका मानना था कि शिक्षा और समाज सुधार ही राष्ट्र निर्माण की नींव है।
1: इसी सोच के साथ उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि देश की सेवा के लिए समर्पित और जागरूक नागरिक तैयार किए जा सके।
0: गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा से ही सच्चा परिवर्तन संभव है।
1: उनके आदर्शों ने महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया, तो क्यों ना हम ही उन आदर्शों को अपनाकर देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दें।
0: इसी संदेश के साथ दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह दो नई रेडियो साथियों के साथ। तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युवावाणी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम शिवानी अरोरा। पश्चिम बंगाल में पहला बेरी भाजपा का सरकार बनल हो। काली भाजपा विधायक दल का नेता चनल गेले के बाद शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ले। उसके बाद 5 को मंत्रियों शपथ ग्रहण कर ले। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही देश का कई गो मुख्यमंत्री शामिल भेले। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचे बदे एको रोडो शो कैले। प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भेले। वहां के पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री और मंत्री लोगन के बधाई दिले। श्री योगी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में लिखले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में अब सोनार बंगला का संकल्प सिद्ध हुई। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालती का आयोजन जिला न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर आसज्जो तहसील में कैल गई। यह आयोजन के जरिए ढेरी संख्या में लंबित वादन का निस्तारण कैले में सफलता मिलल। एको रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर आज प्रदेश भर में आयोजित लोक अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया तेज हो सकती है। लोक अदालत में आपसी सहमति से जहां बड़ी संख्या में पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का निस्तारण हुआ, तो वहीं मोटर दुर्घटना प्रकरण, उपभोक्ता मामले, बैंक ऋण रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों में भी लोगों को काफी राहत।
1: प्रदेश का होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज कौशाम्बी में करीब 2 करोड़

0: 85 लाख रुपया का लागत से बनने वाला जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के कार्यालय भवन का शिलान्यास कैले। यह मौका पर वहां के कैले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली सरकार होमगार्ड जवानन के हित में भत्ता बढ़ावले का ऐतिहासिक फैसला के साथ ही कई को महत्वपूर्ण कदम उठावले हो। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कारपोरेशन का अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल भीषण गर्मी में प्रदेश वासियों के तय शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिले हवे। काली विभागीय समीक्षा में वहां के अधिकारियों अभियंता लोगन के चेतावनी देत कहले की ऐसा व्यवस्था बनावे जैसे गर्मी में ट्रांसफार्मर खराब न होके। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के ओरी से प्रवक्ता संवर्ग का 18 विषयों का कुल 624 पदन वधि लिखित परीक्षा आज से शुरू भेल। राज्य के 17 जिलन का 329 केंद्रन पर परीक्षा वधि कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हवे। पहले दिन में दुई पाली में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषय के प्रवक्ता पद खातिर परीक्षा पूरा भेल। नागरिक शास्त्र, गणित, हिंदी ऑडियो विषय खातिर परीक्षा बेहनहु दुई पाली में आयोजित कैल जाये। आयोग की ओर से सज्जो परीक्षा केंद्र पर शुचिता और पारदर्शिता बदी पुरहर इंतजाम कैल गये रहे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आधिकारिक रूप से काली से शुभारंभ हो गयी हो। ई पर्व मंदिर के पुनर्निर्माण का 75वां वर्षगांठ का प्रतीक हो। 5 दिन के ई उत्सव मंदिर परिसर के वैदिक मंत्रण आ दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदली दी है हो। एको रिपोर्ट।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आ अटल पेंशन योजना 11 बरिस पूरा कई ले लो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से बेसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुकल बा। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 21,500 करोड़ रूपया और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 3,660 करोड़ रुपए का दावा का निपटारा कैल गैल बा। समाचार पूरा भेल। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में अल्प बचत के विभिन्न उपाय विषय पर धीरेन्द्र कुमार मिश्र और रामकृष्ण मिश्र की बातचीत के अलावा सुनेगा खरपतराम और साथियों का गाया लोकगीत। शाम 7:31 पर स्वरबेला कार्यक्रम में प्रेमचंद विश्वकर्मा के काव्य पाठ का प्रसारण होगा। 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे जगजीत सिंह और ए हरिहरन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। शाम 7 बजे 7:45 पर रसरंग और 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 10 मई 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पी एन यादव। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का गायन। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ का प्रसारण होगा दिन में 11:00। दिन में 11:30 पर स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में ऑस्टियोपोरोसिस विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती। 12:00 हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा, प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। दिन में 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी समस्या निदान केंद्र, लेखक विनोद कुमार गौतम, प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की होगी। 5:00 बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। युवा साथियों का प्रोग्राम युवा वाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती विषय पर डॉक्टर मनीष पांडे की बातचीत के अलावा सुनेगा राहुल कुमार मौर्य का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर। शाम 7:31 पर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी चित्रा सिंह। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म भागम भाग का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म मैं हूं ना से, आवाज़ की और वसुंधरा दास की है। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे ही देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का था नया सरकार रविन्द्र जैन

0: प्रधानमंत्री का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे विंशत्युत्तर शतं विधायकानां समर्थनं वर्तते। चतुस्त्रिंशद्

0: पोचिशे बोईशाक इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनमुद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 वादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जो राम राम। बुझावन भैया।
1: हाँ जितन भैया।
0: अरे का हाल चाल बा खेती किसानी का हो?
1: ए जितन भैया, खेती बाड़ी के कुल ठीक ठाक हाल बा हो। अब धीरे धीरे कुल गेहूँ पानी के कुल काम तो खत्म हो गए रहल है। अब धीरे धीरे कुछ खेत खाली बाड़े हैं, तब वो गर्मी के जुताई उताई वाला काम इस समय चलत बा भैया।
0: सही कहला बुझावन भैया। देखा हो ये खेती बाड़ी के बात हो गल, देखा कहल गल ना कि भैया देखा सम्मान जो है ना बहुत जरूरी है।
1: ये भाई जब सम्मान के बात कैला है तो चाहे कोई कोई सम्मान हो, और सम्मान से और सहयोग से एक दूसरे के आदमी आगे बढ़ेला भैया।
0: काहे नहीं भैया, सम्मान बहुत जरूरी हो, चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो चाहे बड़ बुजुर्ग हो, सबकर सम्मान बहुत जरूरी हो। और देखा जौन सम्मान के बात कैला आज ना, तो देखा हमार सरकार जौन हो किसान सम्मान निधि योजना जोनी चलेले हो, और आज के हमने कई बतकही भी हो, तो देखा हो ये मन जौन हमने ये नाम से ही स्पष्ट हो जाता हो कि किसान सम्मान निधि योजना, तो इमन किसान के सम्मान बदे सोचल गल हो।
1: ये जितन भैया देखा एक बात कहीं, जोन किसान सम्मान निधि योजना का बात कैला है ना, ये सरकार का इतना बढ़िया और बेहद खास योजना है कि इसे आर्थिक समस्या तो दूर होबे करेले, साथे साथ अपने किसान भैयन के बड़ा सम्मानो मिला भैया।
0: काहे नहीं भैया, ये योजना का मकसद ही हो कि किसान के बदे कुछ सोचल जाए। अच्छा एक चीज़ ये हो कि जोन ई योजना तो है हो, लेकिन आपन कुछ ऐसा किसान हुए जोन ई योजना का लाभ नहीं ले पावत हुए, ओकर कारण ई बा कि वो जानकारियाँ नहीं ले पाते।
1: देखा भाई कौनो भी योजना सरकार के हो तो ओके, चाहे चट्टी चौराहे हो, चाहे पंचायती हो, चाहे हम हन के जोन कार्यक्रम बाय कृषि जगत के माध्यम से कोशिश होला बतावे का, आ जब तक लाभ तबे मिली जब तुहके जानकारी रही। अच्छा एक चीज और है कि भैया जोन किसान भाई हमारे बाड़े ना, ओमन बहुत लोग जागरूको बाड़े भैया,
0: हाँ हाँ कहने
1: ओकर लाभो लेत बाड़े।
0: लाभो लेत
1: अच्छा

0: लाभ लेकर के कुछ ऐसा भी हमारे किसान भाई बाने कि एक दूसरे के बतेबो करे ना।
1: देखा बतेबो के बात कैला है ना, तो बतावक चाही भी। देखा अपने जागरूक बना, कुछ अगल बगल जोन किसान होन, कमजोर किसान हो। अच्छा देखा इमन का ना कुछ सीमित मतलब लोगन के लाभ मिलत हो। अब कुछ लोग होन कि भैया चला हम इक्का बिस्सा जोन है वही ला, तो हमके तो ये लाभ ना मिल पाई, लेकिन उनके भी बदे भी सरकार सोचत हो।
0: ये देखा ऐसा जितन भी है ना कि सरकार का कोनो भी योजना होला तो ओकर एक ठे मानक होला भाई, वो मानक के अंदर आइबा तो ओकर जरूर तोके लाभ मिली।
1: काहे नहीं
0: अब
1: भैया,
0: भैया अब जौन योजना बाय, अब ओकर योजना के लाभ का मतलब ये बाय कि कम से कम वो किसान भाई के पास 2 हेक्टेयर जमीन होए के चाहिए,
1: अच्छा
0: तो 2 हेक्टेयर जमीन अगर होए के बाद जरूर ओके लाभ मिली,
1: काहे नहीं भैया, ओकरे मानक में बात जरूर लाभ मिली।
0: बिल्कुल मिली। अच्छा एक चीज और बाय कि कबू कबू होला ना भैया कि किसान भाइयन के पास पैसा ना बा, अब खेती का समय आई गई, बीज का जरूरत बा, दवाई का जरूरत बा, जुताई का जरूरत बा, तो वो समय बड़ा संकट हो जाला। तो वैसने समय पर कभो कभो जो किसान सम्मान निधि योजना के लाभ को जो पैसा मिल जाला भैया ना, तो वो पैसा भैया खेती में बड़ा बढ़िया काम करेला।
1: देखा जरूरत के समय तो बड़ा लाभ करेला, लेकिन कुछ किसान ऐसा भी हुआ जैसे कुछ सब नहीं, जैसे कुछ लोग चलन के पैसा मिल गल तो हम के जरूरत अपने खर्चा कर दें, लेकिन नहीं ये तोरे
0: जहाँ
1: सहयोग
0: तो
1: बदे
0: आओ
1: मिलत
0: जीतन
1: हो।
0: भैया, यही से कहा जाला कि छोटे मोटे खर्चन का ही सहारा बा, चाहे कहला जाए कि मजबूरी का मजबूती का सहारा बा।
1: सहारा बा। अच्छा एक चीज़ यो हो कि जोन ई किसान सम्मान निधि योजना हो तो एकर लाभ लेव बदे देखा हो अपने नज़दीकी ब्लॉक चल जा, ना ही होता हो तो प्रधान से मिले, ना ही सेक्रेटरी से मिले, ना ही ग्राम सेवक होलन रोजगार सेवक होलन उनसे मिले, केहू से मिलके एकर लाभ लेवे का कोशिश करें।
0: मन बला के कोनो अधिकारी कर्मचारी बाने तो उनके द्वारा ये सूचना मिल
1: मिल
0: जाले।
1: जाए
0: आ एक
1: और
0: चीज और हो जितन भैया,
1: हाँ बुझाओ
0: एकरे
1: भैया।
0: अलावा जो है कंप्यूटर वा बाय ना, कंप्यूटर तो हर जगह चक्की
1: हाँ
0: चौराहे में
1: भाई।
0: वा बाजारी में बाय ना भैया, तो वही जो जाइबा तो कंप्यूटर वाले भी जो लड़कवा चलावत बाना वो बड़ा बढ़िया कुल जानकारी देव ना।
1: काहे नहीं भैया, जानकारी लेवा चाहबा तो जानकारी मिली।
0: बिल्कुल भाई, लाभ लेवे कहते जाए के होए। अब जैसे प्यास लगी तो कुआं के पास जाए के होई,
1: जाए के
0: अब
1: पड़ी
0: कुआं
1: भैया,
0: तो अपने पास आई नहीं।
1: बिना गईले देखा लाभ भी न मिले वाला हो। और देखा हम कहीं कि जौन इमन लाभ लेवे बदे अगर ब्लॉक पे या कहीं जात हो जानकारी लेवे बदे तो इमन देखा वो आधार कार्ड हो गल, बैंक खाता हो गल मतलब पासबुक जौन बा, जमीन के कागज हो गल और मोबाइल नंबर, देखा ई चार चीज जरूरी हो ये लाभ ये योजना का लाभ लेवे बदे।
0: अच्छा एक चीज और है,
1: हाँ भैया।
0: अब तू जनते हुआ भैया, हमारे किसान भाइयों जाना ना कि बिना आधार कार्ड का कोनो काम कहीं होला नहीं,
1: कहीं नहीं
0: तो
1: भैया,
0: आधार तो बहुत जरूरी बा,
1: बहुत जरूरी
0: आ
1: बा,
0: एक ठे मोबाइल नंबर जरूरी बा।
1: जरूरी
0: अच्छा
1: बा।
0: मोबाइल नंबर ऐसे जरूरी बा कि कागज पत्र भर देला, अब तो के सरकार के द्वारा कोनो सूचना देवे के बा
1: देवक बा।
0: है ना कि भाई कागज पत्र भी कमी बा बेसी बा या कोनो जरूरत बा या लाभ लेवे के समय आएगा, तो ओकरे बदे तुमके डायरेक्ट सूचना भी मिल जाई, तो
1: काहे
0: ये
1: नहीं
0: बदे मोबाइल नंबर देव बहुत जरूरी बा भैया।
1: जरूरी बात। अच्छा एक से ई भी हो ना कि जौन लाभ बा सरकार का वो आपके खाते में सीधे आ जाए।
0: हाँ ईद बड़ा बढ़िया
1: और
0: सरकार
1: एक
0: का।
1: चीज ये भी हो
0: हाँ
1: कि तू ही हुआ एक लाभार्थी जौन हुआ, तू ही हुआ कि कोई और हो,
0: हाँ तो
1: एकरे बदे
0: मोबाइल
1: भी
0: नंबर
1: मोबाइल
0: वहां से
1: नंबर
0: ओकर
1: जरूरी
0: पुष्टि हो
1: होला।
0: जाला
1: हाँ
0: भैया।
1: तो मोबाइल नंबर भी जरूरी हो, देखा हो जेकर मोबाइल हालांकि सबके पहले मोबाइल नंबर हो ठीक है, और आधार कार्ड, आधार कार्ड भैया देखा बहुत जरूरी हो, ई बनवाब जरूरी है, जेकर ना बनल हो तो आधार कार्ड भी बनवा ले ये योजना का लाभ ले दे।
0: हाँ अच्छा एक चीज़ और है,
1: हाँ भैया।
0: ये आधार कार्डवा और मोबाइल नंबरवा
1: हाँ
0: एक में जुड़ल रहे के चाहिए,
1: काहे नहीं
0: तब एक
1: भैया।
0: लाभ मिली।
1: हाँ
0: मतलब ये सिद्ध हो जाए कि मतलब आधार भी तुहार हुआ और जमीन का कागज भी तुहरा हो और मोबाइल नंबर भी तुहरा हो।
1: काहे नहीं। अच्छा भैया देखा कहल गया ना कि हर किसान खुशहाल बनी, किसान के सम्मान मिली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपनाई, सरकार के सहायता पाई।
0: बिल्कुल भैया, ऐसे कहा जाला किसान हुआ देश का शान, उनकर मेहनत ही सबसे बड़ी पहचान है।
1: अरे काहे नहीं
0: और जब
1: भैया।
0: भाई उनके मेहनत जन करत बाणा माने अपनों पेट भरत बाणा भैया, समाजों को पेट भरत बाणा, देशों को पेट भरत बाणा, तो उनके सम्मान तो भाई मिलना जरूरी
1: देश
0: बा।
1: का दूसरा
0: आ
1: सिपाही
0: कितना
1: हुआ भैया।
0: निमन और बढ़िया ये योजना है हुआ।
1: और देश का देखा दूसरा सिपाही हुआ न, जैसे कहल
0: बिल्कुल
1: गल है ना कि जय जवान जय किसान, तो किसान भाई हमारे समझ ल अन्नदाता हूँ।
0: बिल्कुल आनंददाता हूँ भैया। अच्छा इनका जब सम्मान भी होता रही, जब इनके द्वारा खुशहाली भी मिलत रही, तो खेती भी अच्छी होत रही भैया, और जब
1: कहीं
0: खेती अच्छी हुई तो फसल भी अच्छा हुई, जब

0: फसल अच्छा हुई तो सभी भैया अन्नदाता के रूप में लोग बटले बाँटे, सबके
1: कहीं नहीं
0: खाना
1: भैया।
0: पानी भी मिली।
1: तो भैया हमार किसान जौन हुआ ना, ये योजना का लाभ जरूर लें, किसान सम्मान निधि योजना। और देखा हो बात कही तो आगे हुई, तो ये है सनेस है, किसान भाई के सुनवा लीजिए।
0: बिल्कुल सुनवा दे जीतन भैया।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: देखा वो सनेश तो हो गल, और आज के जो हमने के पंचायती में बात कही है का सुनावत हुआ छ
2: ए जितन भैया,
1: हाँ
2: जैसे हमन बात करत लिया जाना भैया किसान सम्मान निधि योजना का, तो मतलब समय पर जेबा में पैसा होए के चाहिए।
1: काहे नहीं भैया?
2: अच्छा, जेबा में पैसा कोई छोटी छोटी बचत कैले से होई?
1: काहे नहीं भैया?
2: भाई बचत ना करवा तो चार पैसा बची ना।
1: कहल गल है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरेला।
2: बिल्कुल सही कहला है। तो यही बदे आज के बतकही में और बचत के विभिन्न उपाय धीरेन्द्र कुमार मिश्र से रामकृष्ण का वार्ता बहा, अब हमारे पंच भाई सुना।
1: सुना दे भैया।
3: धीरेन्द्र मिश्रा जी, आप सीए हो, आज आपसे ये जानल चाहब कि जो अल्प बचत योजना है वो कौन कौन है आ कौने तरीके से लोग ये योजना का लाभ ले सकत हूँ।
4: आप सभी लोगों को नमस्कार। अल्प बचत योजनाएं, बचत योजना का मतलब ये है कि कोई भी आदमी अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए छोटी छोटे रूप में बचत करता है। उसमें बहुत सी है, जैसे एक अटल पेंशन योजना हो गया, दूसरा बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, तीसरा सीनियर सिटीजन जो होते हैं, वरिष्ठ नागरिक जिनको बोलते हैं, वो अपना सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा रख सकते हैं, तीसरा MIS से खुलता है मंथली इनकम स्कीम, ठीक है, मासिक आय योजना, ये हो गया, FDR हो गए, RD हो गए, बहुत सी योजनाएं हैं जो आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप उसमें जमा कर सकते हैं और भविष्य में उसके ब्याज और ये सब मिले उसका लाभ ले सकते हैं।
3: तो आप जैसे अटल पेंशन योजना का नाम लेना है, तो एक कौने तरीके से एकर लाभ ले सकते?
4: अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को या उनपे ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक गारंटी पेंशन योजना बनाई हुई है।
3: अच्छा।
4: इसमें जैसे 1,000 से लेके 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक की पेंशन उनकी आयु जैसे ही 60 साल पूरा होती है उसपे मिलना चालू हो जाता है।
3: अच्छा, तो ये असंगठित क्षेत्र का चीज है?
4: असंगठित मतलब ये है कि जैसे कोई दिहाड़ी मजदूरी वाले हो गए या कोई जैसे छोटे मोटे दुकान वाले हो गए, जो ऑर्गेनाइज जो बड़े बड़े कंपनी है इस सबमें काम नहीं करते हैं उनके लिए असंगठित क्षेत्र हो गए।
3: अच्छा, मतलब एकदम सामान्य लोग,
4: सामान्य लोग उसमें कोई भी कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे इसमें आयु 18 साल कम से कम होनी चाहिए।
3: अच्छा।
4: और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए जो उसमें APR जो इसका लाभ ले सकते हैं।
3: जी, जी,
4: इस योजना में कम से कम 20 साल तक आपको योगदान करना होगा।
3: अच्छा,
4: ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आज किसी व्यक्ति जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उसकी उम्र 18 साल है, तो 18 साल में ये है कि उसको 42 साल तक मतलब 60 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। 18 साल का वो खुद है, 42 साल और जमा करेगा, 60 साल तक जमा करेगा तो जितना उसको पेंशन चाहिए, जैसे 1,000 चाहिए तो उसका योगदान अलग होगा।
3: अच्छा।
4: अगर उसको 5,000 चाहिए तो अमाउंट उस हिसाब से बढ़ जाएगा।
3: बढ़ जाए।
4: जैसे 1,000 पेंशन लेना है 60 साल के बाद तो 42 रुपए पर मंथ जमा करेगा।
3: अच्छा।
4: और अगर उसको 5,000 लेना है तो 210 रुपए जमा करना होगा। अगर मान लीजिए 3,000 लेना है तो 126 रुपए, इसी तरीके से स्लैब बना हुआ है, हर महीने वो जमा करेगा, 42 साल तक जमा करेगा। जैसे ही 60 साल पूरा हो जाएगा उसको अगले महीने से उसके योगदान के हिसाब से जो उसने APR हुआ है उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा।
3: अगर कोई 40 साल पे शुरू कर लस,
4: हाँ, तब जैसे कोई 40 साल पे शुरू कर रहा है तो उसको 20 साल तक जमा करना होगा पैसा, उसकी जो कंट्रीब्यूशन या योगदान की राशि वो बढ़ जाएगी। जो 18 साल की उम्र में शुरू कर रहा था उसको 42 रुपए जमा करना पड़ता था 1,000 पेंशन लेने के लिए, जैसे उसकी उम्र 40 साल है तो चूंकि वो 20 साल ही जमा करेगा तो उसको 291 रुपए जमा करना पड़ेगा 1,000 पेंशन लेने।
3: अच्छा।
4: के लिए और 5,000 पेंशन के 1,454 रुपए लेना पड़ेगा।
3: मासिक रहे कि सालाना?
4: मासिक रहना,
3: मासिक।
4: ये मंथली जब वो योगदान देगा तो जैसे ही

0: 60 साल पूरा हो जाएगा, अगले साल से उसको मिलना चालू हो जाएगा, ये गारंटेड है
1: अच्छा। मान ला कि अगर जमा कैलस
0: जी,
1: मने के जमा कैले के बाद कुछ साल 10 साल 15 साल के बाद अगर मृत्यु हो जाता
0: तो वो बंद हो जाएगा, जमा करना कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा,
1: बंद हो जाएगा,
0: जो उसकी बाकी वो मिलना है तो उसके जो नॉमिनी रहते हैं उसको पैसा मिलना चालू होगा ईयर बीतने के बाद।
1: अच्छा अच्छा, एक तरह से
0: ये हो गया आपका अटल पेंशन योजना। दूसरा है एक सुकन्या समृद्धि योजना, जो अच्छा। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मतलब ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी भारत सरकार द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना मतलब बालिकाओं के लिए है, और इसमें वो बालिका जिसकी उम्र 10 साल के नीचे है उसका अकाउंट उसके अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
1: अच्छा
0: जी, उसमें ये है कि मिनिमम आप जो है 1000 जमा 250 रुपए जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक पर ईयर।
1: अच्छा, ये सालाना हो?
0: सालाना मतलब आप एक बार या तो जमा करें या 12 बार जमा करें, लेकिन मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते।
1: माने खाता में साल में कम से कम 150 जाए के चाहिए,
0: 250
1: जाए के चाहिए,
0: और मैक्सिमम 1.5 लाख। और इसमें ब्याज रेट 8.2% है।
1: अच्छा,
0: इस पे जो ब्याज कंपाउंडिंग होता जाएगा, और ये ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर है, इसके अच्छा। ब्याज पे इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। और जो 1.5 लाख आप जमा करेंगे उसमें आपको सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी जी। तो इसमें ये है कि कोई भी अभिभावक अपनी बेटी के फ्यूचर अच्छा हो उसकी पढ़ाई के लिए या उसकी शादी के लिए, जैसे जब बालिका की उम्र 21 साल हो जाएगी तब पैसा मिल सकता है, या बालिका की उम्र 18 साल हो गया और उसकी शादी के लिए चाहिए तब उसमें पैसा मिल सकता है। लेकिन ये है कि इसमें उसकी आयु 10 साल के नीचे हो तभी आप अभिभावक खोल सकता है जी। एक अभिभावक मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकता है, उससे ज्यादा नहीं खोल सकता है।
1: माने 2 बच्ची नहीं अगर
0: जी
1: तो उनकर खुल सका था
0: जी,
1: तीसरी रही तो उनकर ना खुली।
0: नहीं, अगर जुड़वा बच्चियां हैं तो उसको 1 माना जाएगा मान लीजिए, तो वो खोल सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम 2 खोला जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खोला जा सकता है जी। अब कुछ एक स्कीम है जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, तो वरिष्ठ नागरिकों ये आय का एक अच्छा विकल्प है। इसमें ब्याज 8.2% जो करंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो बीता है 24-25, उसमें 8.2% ब्याज मिलता है। इसमें आप एक बार जो जमा करेंगे वो मैक्सिमम अमाउंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख, 30 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 1000 रुपए है, ये 5 साल के लिए होता है, और इसमें आपको 8.2% ब्याज मिलेगा।
1: अच्छा,
0: इसमें भी 1.5 लाख तक इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, वो बेनिफिट रहता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है।
1: और कुछ
0: विशेष एक है जैसे मंथली इनकम स्कीम, जैसे मान लीजिए कि कोई मासिक इनकम अपना करना चाहते, कोई पैसा लमसम कहीं से मिला, चाहे रिटायर हुए या कहीं किसी व्यवस्था से उनको पैसा मिला, वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में वो पैसा डाल देते हैं लमसम, उसको बोलते हैं MIS मंथली इनकम स्कीम।
1: अच्छा,
0: उसमें सिंगल अगर आदमी डालेगा तो मैक्सिमम अमाउंट उसका 9 लाख होता है, डाल सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है, दो लोगों का मिलके खोलते हैं, तो मैक्सिमम उसमें 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे ही महीना पूरा होगा अगले महीने आपको उसका जो ब्याज आएगा कैलकुलेट करने, आपके अकाउंट जो सेविंग अकाउंट दिए नहीं उसमें वो आ जाएगा, आप उसको निकाल के अपने पर्सनल यूज में।
1: एक करे बदे ही तो जरूरी ना कि माने वरिष्ठ नागरिक रहे,
0: इसके लिए कोई जरूरी नहीं। आपका वरिष्ठ नागरिक के लिए ब्याज देखिए उसमें 8.2%
1: बढ़ रही
0: जी। इसमें ये किसी के लिए भी आपको मंथली इनकम स्कीम खोला जा सकता है,
1: 7.7 रही।
0: हाँ, ये रहता है। उसके बाद और भी है जैसे FDR हो गए, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिए, FD का हो गया, दूसरा हो गया NSC हो गया, NSC हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये हो गए, RD हो गए, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया। जैसे जो रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप हर महीने, जैसे मान लीजिए आपके साथ लमसम FD नहीं कर सकते हैं, तो हर महीने 1000 रुपए या 2000 रुपए एक टाइम फ्रेम के लिए, हमको 2 साल तक 1000 रुपए जमा करना है, तो जो बैंक प्रिस्क्राइब ब्याज रहता है 2 साल बाद आपका प्रिंसिपल उस पे प्लस ब्याज जोड़ के आपको एक साथ दे देगी।
1: इस तो मैंने ये तरह से लोग जो ना अपने छोट छोट बचत के सही जगह लगा के अपन जो ना योजना जो चलत बड़ी ओकर कुल लाभ ले सकते,
0: भविष्य में उसको जो बड़े पैसे का उसी तरीके से आप अपना प्लानिंग करके और पैसा भविष्य के लिए बचा जा सकते।
1: धीरेन्द्र मिश्रा जी, आप अपने बीच में आई ना और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देना।

0: करे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बुझावन भैया,
2: हाँ जितन भैया।
1: देखा हो अपने जिंदगी में ना, हमने देखा है किसान तो जौन ई बतकही रहल अल्प बचत योजना का, तो इमन देखा हो कहल गल ना बूंद बूंद से घड़ा भरला। तो भैया बचत करब बहुत जरूरी है अपने पास प्राणी बदे, बिटिया बदे, शादी करे बदे, कि जब उ शादी के लायक हो जाए जोने उम्र में तो उतना तक का योजना का लाभ ले सके।
2: अच्छा, वही वही बदे देखा है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, कितना नीमन बतकही बतयू ना धीरेन्द्र
1: हाँ,
2: कुमार मिश्रा।
1: और
2: अच्छा, साथे साथ बड़ी योजना का भी चर्चा कैलन हाँ।
1: बहुत भैया।
2: अच्छा, योजना का लाभ भी उठावे के चाहिए और चर्चा भी करे के चाहिए, एक दूसरे के बताओ के भी चाहिए। भाई जब भी सुख दुख पड़ल या कोनो जरूरत पड़ल तो अगर बचत कैले रहबा भैया ना, अब मान के चला घरे में कोई बीमारे हो गए,
1: कहे नहीं
2: अब
1: भैया।
2: पैसा के जरूरत बा, डॉक्टर के यहाँ जाए के बाद बा, अब पैसा बाए ना थोड़ा थोड़ा बचत करके अगर बचौले वाला तो वो समय तो भैया तुम्हारी समस्या का निदान तो हो जाए नहीं।
1: अरे भैया देखा कहला ना कि शुरुआत में अगर कष्ट करबा तो बाद में ओकर लाभ मिलेला।
2: बिल्कुल मिलेगा जितन भैया। और एक चीज और रह जानत हुआ,
1: हाँ बुझान भैया,
2: सरकार एकरे बदे तैयार भी बा।
1: कहे नहीं तैयार तो हमेशा रहला भैया, ओकर लाभ लेओ बदे लेकिन अपने के जागरूक बने।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भैया देखा ये अल्प योजना के जोन बात रहा ना, इमें बहुत सारी योजना हम देखा ध्यान से सुन ला, आप भी सुन ला। तो इमन देखा बहुत से अटल पेंशन योजना है ना, सुकन्या योजना, ऐसे तमाम योजना रहल है जोन अपने सबके बहुत लाभकारी बा। जैसे कहला ना कि अब ही अगर कष्ट करबा तो बुढ़ौती में जोन है एक लाभ मिली।
2: मारे बिल्कुल कभी लाभ मिले होकर
1: कब?
2: कोनो संकट परेशानी आ गई भैया तो
1: हाँ
2: समय योजना में लाभ मिली।
1: हाँ तो देखा हो इ तो नीमन के बतकही रहल है अल्प बचत योजना का। तो देखा हो अपने पंचायती में जब तक मन मनसायन ना होत ना तब तक बड़ा अलग लगाला, मज़ा ना होत।
2: नहीं, हम बुझत है का कहल चाहत
1: हाँ
2: हुआ
1: तो
2: तो।
1: भैया बुझावन भैया एक निक नीमन का गौनई हो खरपत राम और साथी का, लेकिन उसे पहले है संदेश है ना, तो एक ही सुनवा।
2: बिल्कुल सुना दे।

0: बुझावन भैया,
1: हाँ जीतन भैया,
0: अरे बड़ा नगद के गौना ही रहल हो। देखा हो ई विकास गीत जौन हो खरपत राम और साथी के गौना ही रहल है
1: अच्छा एक
0: इस।
1: चीज जीतन भैया एक चीज बता दें,
0: हाँ बुझावन भैया।
1: हमहन के पंचायती में देखा जब तक विकास गीत, देशभक्ति गीत और किसानी गीत जब तक नाही ना होला हो, तब तक मन गदगद नाही होला।
0: नहीं होला।
1: आ एक चीज और जानत हुआ,
0: हाँ
1: अपने किसान भाई जुहत रहे ना,
0: काहे नहीं भैया।
1: चुहत भी रहे ना कि भैया ये लोग हमन के कब गीत गौ नहीं सुनवाई हैं।
0: तो देखा हो ये तो गाद गीत गाऊ नहीं तो हो गल। अब देखा साथ ही साथ काली के जो कार्यक्रम के बारे में बता दे बोल।
1: भैया कल के कार्यक्रम में सवेरे 6:05 पर खेती की बातें में विषय कृषि रासायनिक के प्रयोग में सावधानियां, एकर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: और देखा जो सांझी के जो ए टाइम का कार्यक्रम हो इस समय का 6:30 पर, तो देखा हो इमन देखा एखे नगद का बात कही हो कद्दू वर्गी सब्जियों की खेती ना ये विषय पर देखा डॉक्टर मनीष पांडे से बतीले हुआ रामकिशन मिश्र भैया।
1: ये देखा भैया, सब्जी के जब बात कैला ना, तो सब्जी चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, आ सब्जी 12 महीना चाहे ले,
0: काहे नहीं भैया।
1: तो सब्जी का खेती के बारे में अगर हमारे किसान भाई बत कही सुनी है, जानकारी ली है, तेकर लाभ उठाइए भैया।
0: काहे नहीं भैया, देखा हो अपने जीवन में रोजमर्रा जिंदगी में सब्जी रोज खाए के चाहिए। सब्जी में जैसे आपका सलाद उलाद हो गल ये समय तो ज़्यादा कासे इतना गर्मी पड़ता है ना कि पानी के जो स्तर हो शरीर में बनल रह जाए।
1: गर्मियों पड़ा था, रह रह करके मौसम बदलू
0: अच्छा
1: जाता,
0: देखा
1: बरखो हो
0: हो
1: जाता
0: मौसम
1: भैया।
0: के बात कहले है ना, तो देखा आजकल जैसे सांझी के जो है इतना गर्म होता हो उमस होता हो। अच्छा जब सूत जाता आदमी तो जौन बीच रात हो तो उमन का लोगन के ठंडी से हरावन लग लगत हो। तो एमन का होता कि भाई जे पंखा चले ले बा पंखा बंद कर दे और खिड़की खोल ले बा तो खिड़की बंद कर दे बा है ना, तो कुल तरह से वो बचा चाहत बा। तो यानी मौसम बड़ा अजीब हो गए इस समय और बड़ा बच बच बचा के रखे गया। और सुना अपना नहीं अपन जोन गदेला हन उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: भी बड़ा बचा के रखा क्यों, नहीं जोनी शीत गर्म पड़ जाए ना।

0: बच्चा बीमार हो सकला।
1: ये जितन भी भोरवा में ठंडो लगत बा हो।
0: अरे बड़ा अच्छा लगा ला उसमें सुतम में, तब अच्छा लगा ला, लेकिन नुकसानी भी हो, थोड़ा सुरक्षा का ध्यान देवे कोई।
1: बिल्कुल देवे कोई भैया।
0: और देखा भोरे के बात कैला तो भोरे में देखा लोगन के ना टहले के भी चाहिए
1: ये
0: ताकि स्वस्थ
1: भाई
0: रहे।
1: जब टहले के बात कैला है तो टहले से स्वास्थ्य अपन बढ़िया रहेला अब बहुत जरूरी है। सवेरे उठ करके काम धाम करके भाई टहलाई
0: हाँ
1: भी हो गई तो कितना बढ़िया बात भाई।
0: काहे से देखा, और देखा इस समय जो उमस चला था ना, तो इस समय बड़ा बच बचा के रहक जुआ था, तो भाई किसान भाई अपन जौन हुआ तो गोजी डंडा ले ले हों ठोक टका के रहें ताकि जड़ जानवर ना आवा घरे में। और हो रोडे पे
1: जब
0: चले तो बड़ा ध्यान से जो सड़क पे चलें
1: हाँ
0: तो भाई जोन ट्रैफिक नियम बा, जोन यातायात का नियम बा, ओके बड़ा ध्यान दें। हे देखा हो और बतियात बोलत जाए कभी बेरा होगल तो पंच लोगन से आज्ञा लेवल जा, तो पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कारवां का गीत। इस गीत को लिखा था मजरूनी और धुन तैयार की थी RD बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म सुहागरात से। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 जैरोमीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार आकाश मणि त्रिपाठी 20 जनवरी सन 2026 से लापता है। आकाशमणि त्रिपाठी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 31 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, ये हिंदी भाषा अच्छे से बोल लेते हैं। रंग सांवला है, ये सफ़ेद ऑरेंज और काले रंग की जैकेट, नीले रंग का जीन्स पैंट पहने हुए हैं। इनके बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर प्रभारी निरीक्षक थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। प्रभारी निरीक्षक थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार इंद्रजीत कुमार पुत्र शंभुनाथ निवासी ग्राम कनेरी थाना रोहनिया वाराणसी, ये 23 जनवरी सन 2026 से लापता है। इंद्रजीत कुमार के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 31 वर्ष, लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, सामान्य कदकाठी है, ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेते हैं। यदि आपको इंद्रजीत कुमार के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर प्रभारी निरीक्षक थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.5 जैरोमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ पलों में

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता, संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
2: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प

होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों

0: एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी बानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
1: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय थीम बेस्ड कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
3: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
4: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध

सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्मकुमार ने आज आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है प्रेमचंद विश्वकर्मा का काव्य पाठ।
2: मेरी पहली रचना एक मुक्तक से शुरू होती है। महकी महकी फिजा है ये क्या बात है, चांदनी में नहाई हुई रात है, आपू सब आए महफिल जमासी लगे, होने वाली क्या फूलों की बरसात है, महकी महकी फिजा है ये क्या बात है। एक रचना देखें जो सामाजिक ताने बाने की समरसता से संबंधित है। वृक्ष पर बैठा पक्षी उड़ाए नहीं, डाली डाली पे झगड़ा लगाए नहीं, वृक्ष पर बैठा पंछी उड़ाए नहीं, दाना चारा भी हमसे नहीं मांगते, रात दिन ये कलह में नहीं जागते, भूल कर घोंसले को जलाए नहीं, डाली डाली में झगड़ा लगाए नहीं, वृक्ष पर बैठा पक्षी उड़ाए नहीं, पेड़ पर्वत नदी ईश्वर दान है, जो मिटाते इन्हें वे ही नादान है, पेड़ पर

नदी ईश वरदान है जो मिटाते इन्हें वे ही नादान है। ऐसी नादानियों को बढ़ाए नहीं, डाली डाली में झगड़ा लगाए नहीं। वृक्ष पर बैठा पंछी उड़ाए नहीं, झील तालाब को आँख के आब को, झील तालाब को आँख के आब को, आँखों में पल रहे एक नए ख्वाब को, प्रार्थना है कि हरगिज मिटाए नहीं। डाली डाली में झगड़ा लगाए नहीं, वृक्ष पर बैठा पंछी उड़ाए नहीं। जिस गली में मकान आपका मान्यवर, जिस गली में मकान आपका मान्यवर, ढेर सारी रुई की दुकान मान्यवर, आग नफरत की हरगिज, आग नफरत की हरगिज लगाए नहीं। डाली डाली में झगड़ा कराए नहीं, वृक्ष पर बैठा पक्षी उड़ाए नहीं। फूल गुलशन में होते

दुनिया में रहते कई ढंग के, अपनी मर्जी तो इन पे चलाए नहीं, वृक्ष पर बैठा पक्षी उड़ाए नहीं, डाली डाली में झगड़ा कराए नहीं, जाति मजहब की चर्चा नहीं कीजिए, बेवजह बुद्धि खर्चा नहीं कीजिए, भाईचारे में नफरत को लाए नहीं, डाली डाली में झगड़ा कराए नहीं, वृक्ष पर बैठा पक्षी उड़ाए नहीं। एक दूसरी रचना मान्यवर आप लोगों के बीच में, गांव देहात से ये रचना है, कोई निवेदन कर रहा है शहर में अपने भाई के लिए, अपने लोगों के लिए। कहता है, चकाचौंध आँखों में खटके मन भटके, उलझाव में इस शहर छोड़ कर चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में। चकाचौंध आँखिन माँ खटके मन भटके, उलझाव में यह शहर छोड़ कर चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में। और क्या कहता है, महुआरी बसवारी में भी बैठ के चिड़िया चहके, महुआरी बसवारी में भी बैठ के चिड़िया

भाव में यह शहर छोड़ कर चलो रे साथी, निज पूर्वज के गांव में यह शहर छोड़ कर चलो रे साथी, निज पूर्वज के गांव में। और हवाला देता है कि बूढ़ा

बूढ़ा बरगद बूढ़ा पीपल आज भी देता छाया शीतल। बूढ़ा बरगद बूढ़ा पीपल आज भी देता

फिर बैठे जिसकी छाँव में, यह शहर छोड़कर चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में। चकाचौंध आखिन माँ खटके मन भटके उलझाव में, ई शहर छोड़ के चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में। कहता है गांव की हालत को बताता है, गीता रामायण की बातें दुख सुख कहे सुन कटती रातें, गीता रामायण की बातें दुख सुन के दुख सुख कहे सुन कटती रातें। जहाँ लोक कथा की प्रथा आज भी जीवित जले अलाव में, यह शहर छोड़ कर चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में, ही शहर छोड़ कर चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में। और बताता है कि अपने खेत का कोना कोना आज भी

कान में छम छम पायल बाजे पाँव में, यह शहर छोड़ कर चलो रे साथी निज पूर्वज के गांव में। और एक विशेषता यह भी बताता है, पुरवा सावन की मन भाए वासंती।

गांव में ही शहर छोड़कर चलो रे साथी, निज पूर्वज के गांव में ही शहर छोड़कर चलो रे साथी, निज पूर्वज के गांव में चकाचौंध आंखों में खटके मन भटके उलझाव में, यह शहर छोड़कर चलो रे साथी, निज पूर्वज के गांव में। और गांव से ही संबंधित एक और रचना आप लोग देखें। एक भारतीय विदेश से लौटता है और उसके साथ उसकी कोई दोस्त है और अपने गांव अपने देश की बात को कहा है युवक, तो वो बाद में पूछती है कि भाई कहाँ है आपका गांव, कैसा है आपका गांव? तो भारतीय युवक उत्तर देता है, जिस धरा पर, जिस धरा

जिस धरा पर धरा तुमने पाँव है, स्वर्ग से सुंदर यही वह गाँव है। प्रातः नित झाड़ू लगा जाती पवन है।

जिस धरा पर धरा तुमने पाँव है, स्वर्ग से सुंदर यही वह गाँव है। और बताता है कि देखो गा रही

प्रियतम की पाती बाँचती है। बस स्वर भुसुंडी, बस स्वर भुसुंडी के ही कर्कश काम है। स्वर्ग से सुंदर यही वह गांव है। बस स्वर भुसुंडी के ही कर्कश काम है। स्वर्ग से सुंदर यही वह गांव है। बाग उपवन ताल शोभा युक्त है। बाग उपवन ताल शोभा युक्त है। गांव के परिवार भी संयुक्त है। साधु सज्जन शक्ति का यह ठाव है। स्वर्ग से सुंदर यही वह गांव है। जिस धरा पर धरा तुमने पाँव है। स्वर्ग से सुंदर यही वह गांव है। बाग उपवन ताल शोभा युक्त है। गांव के परिवार भी संयुक्त हैं। तो फिर आगे कहता है,

0: इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी कविता को समाप्त करते हैं।
1: स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद विश्वकर्मा का काव्य पाठ मीडियम वेव 241.54 मीटर पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म सरफरोश का गीत। गीतकार हैं निदा फाजली और संगीत जतिन ललित का।

जग्गी सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरफरोश का गीत, रचना निदा फाजली की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सीता और गीता से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह और ए हरिहरन की गाई गजलें। आइए पहले सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई गजलों।

ए हरिहरन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अमित कुमार और कंचन की आवाज में फिल्म कुर्बानी का गीत। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

Gulu.

अमित कुमार और कंचन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म अरमान से। आवाजें बप्पी लहरी और शेरोन प्रभाकर की है। गीतकार इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म लूट मार से। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म नमक हलाल से, आवाज किशोर कुमार साथियों की है। इस गीत को लिखा अनजान ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK

0: पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री

0: इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद ना तो अमेरिका और ना ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांध्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्य

0: aim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties, set to take oath as chief minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजरा आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नवन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाकये के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में तमिल गायत्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर

0: गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मधु किया। अब पार्टी को मजमूरी तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवीके पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: हालिया असेंबली इंतखाबात में टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकानी असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 अरकानी असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहरीन के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की

गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों

दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेडचुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेडचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहिरीन और दीगर सिविलियन माहिरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका सिफारतकारी में मसरूफ है और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमेरिका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आप नाए हुरमुस और उसके अतराफ ताजा वाकयात के पसे मंजर में ये बयानात सामने आए हैं जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वीं मुंबई बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदिराज करा सकते हैं जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साला तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सपू को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। IPL में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असेंबली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसी के IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का

0: आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये गजल।

1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर।

0: निपुण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santur recital with rag Jan Sammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: मानव मात्र में भेद क्यों?
1: समानता सह अस्तित्व हर जीव का अधिकार।
0: अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिखाई सत्य, शांति, प्रेम और अहिंसा की राह।
2: आइए इस राह पर चलने का संकल्प लें, सत्याग्रह के मूल मंत्र को बनाएं लक्ष्य प्राप्ति का आधार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अदलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP chief minister of West Bengal today. गवर्नर एआरएन

अनुमति दीजिए। जय हिंद। दस मिनट हो चुके हैं, संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।